एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पहली तिथि। तदनुसार

23 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटरी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटरी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग

0: दिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह की 6:05 हुए हैं। चिंतन सच्ची और विश्वास युक्त प्रार्थना में अपार शक्ति है। प्रार्थना की ये शक्ति और भी असीम हो जाती है जब हम वो याचना करें जो जन जन के लिए कल्याणकारी हो, जिसमें धर्म की जय और अधर्म की पराजय हो, दुखों का नाश हो और हर तरफ सुख की वर्षा हो। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

पाने का एकमात्र साधन है। भक्ति से परम शांति, दिव्य आनंद एवं अमर सुख की प्राप्ति होती है।

संत महापुरुष नाम सुमिरन निष्काम सेवा और सत्संग द्वारा शरणागत को भक्ति पथ सुझाते हैं। यही भक्ति सच्चे सुख को

इस भजन में यह वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

प्रभु की आराधना करने से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। हमारे भीतर लोभ, मोह, अहंकार आदि के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, भक्ति के द्वारा वह समाप्त हो जाते हैं और हृदय में प्रेम जागृत होता है।

न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए था। सुजानपुर की बेटियों ने रचा इतिहास, अंडर 17 फुटबॉल टीम बनी ऑल इंडिया चैंपियन। फाइनल में सैनिक स्कूल चंद्रपुर को हराकर प्री सुब्रतो कप 2026 अपने नाम किया। आपको बता दें, देश भर के 111 सैनिक स्कूल्स के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा को यहां की अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बात करें मौसम की तो धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में रह रहकर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर भारी गरज के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग।

शुभ प्रयाग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुलदीप राणा की आवाज में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।

0: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई जाए। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खडकुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायु सेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में

0: भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग से बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज, ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले

गाने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार के गायक कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

किशोर कुमार की आवाज में कर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब आपके रेडियो सेट पर है पुकार फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से.

राजेश रोशन की बनाई तर्ज पर लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है काला पत्थर फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथ

गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। परवरिश फिल्म के इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं कालिया फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 9 बजे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: दोस्तों नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल को लेकर शायरों और कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें दिल का अलग अलग भावों के साथ प्रयोग किया गया है। कभी ये दिल खो जाता है, कभी टूट जाता है, तो कभी ये दिल मानता ही नहीं है। इसमें कितनी वास्तविकता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक सत्य ये है कि दिल मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो जन्म से लेकर अंत तक लगातार बिना रुके अपना कार्य करता रहता है। जाहिर सी बात है, दिल का धड़कना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन जब भी दिल की ये धड़कनें तेज हो जाती हैं या मंद पड़ जाती हैं, या दिल की कार्य प्रणाली में कोई व्यवधान आ जाता है, तो शुरुआत होती है हृदय संबंधी रोगों की। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल जैसे रोग जिनका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये हमारे जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। हृदय रोग, कारण, लक्षण और बचाव, ये विषय है हमारे आज के आरोग्यम कार्यक्रम का। हमारे साथ हैं विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डॉर अमीन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू
0: जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि संबंध में जो हमारा विषय है, इसके संबंध में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं 01892-224-391, स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। इससे पहले कि हृदय रोगों के संबंध में हम बात करें, डॉक्टर साहब संक्षेप में ये बताइए कि हृदय हमारे शरीर में कार्य क्या करता है।
1: जैसे कि आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोला है कि जो हमारा हार्ट हमारे जिस्म में क्या काम करता है, तो जो हमारा हार्ट होता है उसका जो काम होता है वो हमारे बॉडी को ब्लड पहुंचाना होता है। तो जैसा कि एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, जैसे कि एक गाड़ी में जैसे एक इंजन होता है जो पूरी गाड़ी को चलाता है, ऐसा ही हमारी बॉडी में जो एक मशीन की तरह काम करता है उसमें जो हार्ट का रोल होता है वो इसी इंजन की तरह होता है जो हमारे सारे हमारे ऑर्गन्स को ब्लड पहुँचाता है और उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं जिससे हमारी बॉडी चलती है। तो हार्ट का बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, आम तौर पर सुनने में आता है हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया या हार्ट ब्लॉक हो गया, इन में अंतर क्या रहता है?
1: हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो हमारे लिसनर्स को समझना है। तो जो हम जो ये हार्ट जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले मैं एक समझाता हूँ कि जो हार्ट की जो मेन प्रॉब्लम्स समस्या होती है वो क्या क्या क्या होती हैं और कितने किस्में होती हैं उसमें।
0: जी जी।
1: तो अगर हम जो कॉमन प्रॉब्लम्स हार्ट में होते हैं तो एक जो कॉमन ग्रुप होता है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा है या पहले भी ज़्यादा था, जो पूरे दुनिया में हम उसको बोलते हैं कि ये लीडिंग कॉज ऑफ जो मोर्टेलिटी होते हैं, जो पूरे दुनिया में जिसकी वजह से डेथ्स हो जाते हैं, वो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हम उसको बोलते हैं, जो इसको अपने हार्ट अटैक जो हार्ट जो होता है, तो इसके जो कॉमन जो होता है ये सर्कुलेशन हम बोलते हैं
0: जी।
1: सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे हार्ट में नसियाँ होती हैं, पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड जाता है हार्ट। क्योंकि पहले हमें समझना है कि जो हार्ट एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो होता है उसके अपने एक मसल होती हैं जो पंप करती है ब्लड को, और उस मसल को चाहिए कंटिन्यूसली एक ब्लड सप्लाई जो नाड़ियों से आती हैं जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। और तीसरा उसमें होता है उनकी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट का जो उस मसल को कंट्रैक्ट पंपिंग करवाते हैं। और चौथा होती है एक इसमें वाल्व्स होती हैं, वाल्व्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो पांचवा होता है उसकी जो लाइनिंग होती है एक आउटर एक कवरिंग होती है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं शुरू करते हैं कि जो ब्लड सप्लाई हार्ट की होती है जिसको हम बोलते हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो अगर इस सर्कुलेशन में इन नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो अगर सडनली अचानक से ये हार्ट में 100% ब्लॉक आ जाए तो जो हार्ट को ब्लड जो चाहे वो रुक जाता है
0: जी,
1: इस पोर्शन को, इस सेगमेंट को, तो इसको हम बोलते हैं ये हार्ट अटैक हुआ है
0: जी। डॉक्टर साहब, 100% ब्लॉकेज की आपने बात की है, लेकिन इससे कम भी रहती होगी, एकदम से 100% तो नहीं आती होगी, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए?
1: अगर जो ये नस होते हैं, अगर ये 100% नहीं होती हैं, तब भी इसमें ब्लड आगे जाता है और इसमें पेशेंट को, इसको हम मतलब जो माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं
0: जी जी,
1: हाँ, उसमें भी पेशेंट को सिम्टम जो होते हैं वो यूजुअली छाती में दर्द होता है या उसमें सांस में दिक्कत हो सकती है या उसका जो दर्द है वो कभी जो बाजू में ये होता है, रेडिएट होता है, या नेक में होगा, जया में होगा, या कभी कभी उसको सडनली फैंट भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें जो ये हार्ट अटैक्स होते हैं
0: जी।
1: जो मैं समझाना चाहता हूँ कि मतलब जो ये एक तो एक ये हो गई जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने बताया, जो हार्ट अटैक जो होते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम होती
0: जी,
1: है,
0: ठीक से ब्लड सप्लाई हार्ट तक ना पहुँचे
1: उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं
0: जी।
1: दूसरे होता है कि जो कार्डियक अरेस्ट आपने बोला, कार्डियक अरेस्ट होता है, वो जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे हार्ट को जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं या जब उसको एरिदमिया बोलते हैं या रिदम प्रॉब्लम्स अगर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट में तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है ये अचानक पंपिंग इन इफेक्ट मतलब इफेक्टिव नहीं होता है, पूरा पंप नहीं करता है, सो हमारे बॉडी को ब्लड प्रॉपरली नहीं मिलता है
0: जी, यानी हार्ट तक ब्लड तो पहुंच रहा है
1: हाँ,
0: लेकिन वो आगे पंप नहीं हो पा रहा है,
1: हाँ आगे इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो रही है उसमें
0: जी, जी, जी।
1: तो उसमें अचानक क्या होता है, इसमें पेशेंट ये अचानक चाहे ये कहीं भी काम करता हो, चाहे कहीं भी सिचुएशन में हो, तो वो अचानक गिर जाता है
0: जी,
1: तो ये बेहोश हो जाता है इसमें यूजुअली पेशेंट। तो अगर ऐसे सिचुएशन कभी आ जाए आपके सामने हैं, कभी कोई काम कर रहा है या कोई ऑफिस में है या कोई खेत में काम कर रहा है, तो अगर उसको अचानक आपके सामने कोई ऐसा बेहोश हो जाए, गिर जाए, उसको अचानक से चक्कर आ जाए और अगर वो आप सांस प्रॉपरली नॉर्मली नहीं ले रहा है, तो अगर उसको उसको बोलते हम ये जो लिए कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उस वक्त उसमें इमिजिएटली जो भी नियर बाईस्टैंडर्स होते हैं उनको इमिजिएटली उसको हम बोलते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, तो छाती दबाना है उसको फास्ट से
0: जी,
1: तो तब उसमें बहुत से मतलब हम जो लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये होता है कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम
0: जी।
1: तीसरा जो आपका प्रश्न था वो है हार्ट फेलियर क्या होता है
0: जी।
1: हार्ट फेलियर जो होते हैं, ये जो तीसरी चीज़ मैंने बताई वो हार्ट मसल होती हैं, जो अगर हार्ट मसल के साथ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उसमें क्या होता है, इसमें जो मसल प्रॉब्लम होती हैं इसमें हम दो तीन चीज़ें इसमें जो कॉमन होती हैं, एक तो हम बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसको जो होता है जो हार्ट फूल जाता है, जो हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाती है
0: जी।
1: जब हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाती हैं, जितना हार्ट पंप करता है पर हार्ट बीट में, नॉर्मली हम

0: 60 से 100 ml पर बीट हमारा पंप करता है अभी। तो अगर वो उससे फिर वो उसकी जो पंपिंग जो करता है वो कम हो जाती है, जो इतना जो स्ट्रोक वॉल्यूम हम उसको बोलते हैं, तो जो पंपिंग पावर को कम हो जाता है तो उसको हम जो हार्ट उसका बोलते हैं कि जो हार्ट कमज़ोर हो गया है। तो हार्ट कमज़ोर का ये होता है इसमें कि इसमें वो हार्ट पूरी तरह से पंप नहीं करता है, और जो हमारी बॉडी को चाहिए जितनी बॉडी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं
1: जी
0: उतना वो मसल पंप नहीं कर पाती हैं। तो इन पेशेंट में यूजुअली जो होते हैं इनमें यूजुअली जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो होता है उनमें वीकनेस आ जाती है, उनको लगता है कि पहले जैसे हम नहीं रहे हैं, पहले तो हम बहुत काम करते थे। तो इसमें जो कॉमन सिम्टम यूजुअली वीकनेस हो जाती है, या उसमें पेशेंट को जब भी वो चले थोड़ा तेज़ तेज चले या कहीं सीढ़ी पे चले तो उसमें सांस में दिक्कत आ जाती है
1: जी।
0: तो वो उसकी जो कॉमन सिम्टम रहता है वो ये रहता है, डॉक्टर साहब पहले तो मैं चलता था इतने कुछ मीटर चलता था
1: जी,
0: इतने सीढ़ियाँ चढ़ता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी अब प्रॉब्लम होने लगी कि मुझे सांस लग मुझे रुकना पड़ता है
1: जी,
0: मुझे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है फिर चलना पड़ता है, तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है। इसमें दूसरा जो हार्ट फेलियर उसको हार्ट फेलियर बोलता है, और दूसरा जो टाइप होता है हार्ट फेलियर का उसमें हार्ट मसल यूजुअली स्टिफ हो जाती है
1: जी।
0: तो ये होता है मसल प्रॉब्लम जब रिलेटेड रित होती है तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब इस संबंध में हम आगे बात करेंगे। श्रोताओं आपको बता दें आज कार्यक्रम में जो हमारा विषय है हृदय रोग कारण लक्षण और बचाव, और डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया इनमें से कोई सिम्टम आपको अगर नज़र आ रहा है, आप इनमें से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01-892-224-391 है स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। डॉक्टर डार अमीन हमारे साथ हैं, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
1: जी राकेश जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
2: तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
2: जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हम कोटखाई में रहते, कई बार किसी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की सुविधा नहीं होती, अगर ऐसे में किसी को हार्ट अटैक अचानक आ जाए तो ऐसे में उन लोग को हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम समय पे अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, ये मेरा प्रश्न है
1: जी। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर रास्ते ठीक नहीं हैं, क्योंकि हिमाचल की जो रहने सहने की जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि प्रॉपर कई जगह अभी भी रास्ते नहीं हो सकते हैं, तो पेशेंट को कितनी देर तक पहुंचाया जा सकता है अस्पताल में, और किस तरह से उसको वहीं पर ही कुछ ऐसा किया जाए कि वो अस्पताल पहुँचने तक तंदुरुस्त रहे?
0: देखो इसमें यह है, अगर पेशेंट को घर में कभी छाती में दर्द हो और आपको लगे कि ये दर्द उसको रिलीव नहीं मिल रहा है, तो उसको कि लग रहा है कि मतलब अब घर में थोड़ा बहुत डायग्नोज करना है कि यह हार्ट अटैक है या और कोई भी रीज़न हो सकता है जो छाती में दर्द होता है, लेकिन जो अगर जो ये दर्द होता है ये बहुत ही सीवियर दर्द होता है तो ये बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें अगर घर में आपको कोई जो दवाई रहती है, यूजुअली जब हम खून पतक करने वाली दवाई जिसको हम एस्प्रिन बोलते हैं, अगर वो एस्प्रिन आपके घर में हो या आपको नियर बाई हैं कोई फार्मासिस्ट का मतलब कोई शॉप है वहाँ से आप भी ले सकते हो, तो उसमें जो एस्प्रिन हो सकते हैं वो च्यूएबल एस्प्रिन आता है उसमें वो वहाँ वो ले सकता है घर में। और दूसरा होता है कि अगर जो सॉर्बिट्रेट एक टैबलेट आ जाता है जो डाइलेटर होता है, ठीक, तो वो टैबलेट वो ले सकता है, यूजुअली वो सब लिंगवल मतलब जीभ के नीचे रखना होता है, तो वो टैबलेट वो ले सकता है उस टाइम। और इसमें जो हार्ट अटैक में यूजुअली घर में ज़्यादा ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हैं, उसका जो नियर बाई आपका हॉस्पिटल होता है या नियर बाय आपका जो लोकल डॉक्टर होता है उसके बेटर हैं कि उसको वहीं पे ले जाएं, या अगर जो नियर बाय हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ले जाएं, जो वहाँ का डॉक्टर होगा वो थोड़ा उसको ईसीजी करेगा, वो एट फर्स्ट ही वो डायग्नोज करेगा कि हार्ट अटैक है कि नहीं है, क्योंकि हर कोई अगर छाती में दर्द होता है तो यूजुअली जो होता है यूजुअली 10-15% ही हार्ट का मतलब जो हार्ट अटैक होता है जो छाती में दर्द होता है हर कोई छाती में दर्द होना हार्ट अटैक नहीं होता है। तो पहला ये होता है कि उसको डायग्नोज करें कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं, लेकिन वो आप घर पे नहीं कर सकते हैं, तो
2: जी
0: उसमें आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं
1: जी
0: अगर
1: राकेश
0: उसको
1: डॉक्टर साहब
0: लगेगा।
1: ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इस तरह के लक्षण अगर किसी मरीज में आपको दिखाई देते हैं, तो आप जो आपकी सबसे नज़दीकी डॉक्टर साहब हैं, आप वहाँ उनको ले जा सकते हैं, और फर्स्ट एड दिलाने के बाद कंफर्म अगर हो जाए कि ये प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है, तो आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। जी, और कुछ पूछना चाहेंगे?
2: जी, धन्यवाद।
1: जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है, हृदय रोग कारण लक्षण और बचाव, विषय संबंधी जानकारी देने हेतु आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर जार अमीन। 01892224391 ये है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं, सामान्य तौर पर क्या कारण रहते हैं जिनसे हार्ट को यानी हृदय को आघात पहुँचता है?
0: जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो और एक प्रॉब्लम जो डिस्कस करना है, जो जो हार्ट वाल्व्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उनमें हम यूजुअली जो लीकेजेस प्रॉब्लम हो जाती हैं या वाल्व सुकड़ जाती हैं ना, वो भी
1: बड़ा कारण बनता
0: है।
1: जी, इस संबंध में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की सूचना की जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किन्नौर जिला में बनाए गए 386 मकान। मणिमहेश यात्रियों को हड़सर से गौरीकुंड के बीच उपलब्ध होगी बीएसएनएल की 2G सेवाएं। प्रशासन ने यात्रियों के लिए जारी किए एहतियाती उपाय। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। वर्ष 2006 में 62 टीवी चैनलों की तुलना में आज 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनजातीय जिला किन्नौर में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के तहत जिले में 386 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। विस्तृत ब्यौरा हमारे किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनजातीय जिला किन्नौर में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 601 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार 600 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया और 599 मकानों को मंजूरी मिली। इनमें से अब तक 386 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। ब्लॉकवार देखे तो कल्पा में 73, निचार में 192 और ऊ में 121 मकान पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध करवाना है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू जिला के कसोल में उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर की अध्यक्षता में नशा निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर सहित पुलिस व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मणिकर्ण कसोल घाटी में मादक पदार्थों के अवैध सेवन, बिक्री, तस्करी, वितरण की रोकथाम तथा क्षेत्र में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के बीच उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में आने वाले प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर नेपाली मूल के श्रमिकों के संबंध में भी चर्चा की गई। उनके क्षेत्र में आने का उद्देश्य नियोजक व निवास संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखने तथा लागू नियमों के अनुरूप सत्यापन और रिकॉर्ड रखने पर भी बल दिया गया। बैठक के दौरान स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों, होटल व्यवसायियों व अन्य प्रतिभागियों से नशे से संबंधित गतिविधियों, अवैध पार्टियों, संदिग्ध व्यक्तियों व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई। स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री अथवा वितरण से संबंधित किसी भी सूचना को पुलिस व संबंधित विभागों के साथ साझा करें। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिलोकीनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय पोरी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण बढ़ाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने कहा कि पोरी मेला लाहौल स्पीति की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ लोक संस्कृति, परंपराओं और भाईचारे को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों और स्टार कलाकारों ने लोकगीतों, लोक नृत्यों और रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मणिमहेश यात्रियों को इस बार हड़सर से लेकर गौरीकुंड तक BSNL की 2G सेवाएं मिल पाएंगी। पहले हड़सर से मणिमहेश तक मोबाइल सिग्नल न होने के कारण ये क्षेत्र ब्लैक जोन रहता था और 13 किलोमीटर के पैदल सफर के दौरान यात्री अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाते थे। जिला प्रशासन के प्रयासों से धनछो में BSNL का टावर स्थापित किया जा रहा है, जो 4 सितंबर से शुरू हो रही मणिमहेश यात्रा से पूर्व कार्य करना शुरू कर देगा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मणिमहेश यात्रियों को संचार की सुविधा देने के लिए ये पहल की गई है।
2: BSNL के माध्यम से 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक धनचो पे टावर है एस्टैब्लिश करने का कार्य किया जा रहा है। टावर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जो उनके BTS लगते हैं जिसके बाद रेडिएशन स्टार्ट होती है वो भी यात्रा से पहले पहले 20 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो BSNL का एटलीस्ट आपके पास 2G नेटवर्क जो है वो नीचे हमारे हड़सर से लेके ऊपर आपके गौरीकुंड तक अवेलेबल रहेगा, ताकि जो एक पूरा ब्लैक आउट जोन बन जाता था वो इस बार की यात्रा में हमें देखने को नहीं मिलेगा।
0: उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की कि पंजीकरण के उपरांत ही मणिमहेश यात्रा पर जाएं।
2: मेरी सभी श्रद्धालुओं से पहली अपील तो यही रहेगी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यात्रा का प्लान करें, मौसम की करंट जानकारी उपलब्ध करें, उसी के बाद अपनी यात्रा का प्लान करें। साथ ही में जो मणिमहेश की यात्रा है ये एक डिफिकल्ट ट्रैक रूट है, लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है और आप 4500 मीटर की हाइट पर जाते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आएँ। चप्पलें वगैरह में यात्रा निकरों में यात्रा करने वाली नहीं है, अपने पास सर्दी के कपड़े रखें, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज रखें, रेनकोट अपने साथ लेके चलें। लंगर और दुकानें काफ़ी कंटिन्यूसली आपको मिलती हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ बेसिक खाने का और पीने का पानी ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें। छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ इस यात्रा को अवॉइड करें। यात्रा का एक ही आधिकारिक रूट है जो कि आपका हड़सर से ऊपर जाते अपने।
0: हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसें निगम के लिए बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया बन रही हैं। HRTC धर्मशाला के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्ढा ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से निगम को ईंधन खर्च में बचत हो रही है और इन बसों में प्रदूषण व शोर कम होने से यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि बेहतर रूट प्लानिंग और अपॉर्चुनिटी चार्जिंग के चलते बसों का औसत दैनिक संचालन 217 किलोमीटर तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मंडी में पिछले 8 घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं कुल्लू में भी आज सुबह बारिश का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 28 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इस अवधि के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश भर में भूस्खलन से 98 सड़कें और 89 बिजली ट्रांसफार्मर तथा 42 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। संबंधित विभागों द्वारा इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच सिरमौर जिला के गिरी जंटोन डैम से आज शाम 7 बजे पानी छोड़ा जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुरक्षा के दृष्टिगत स्थानीय लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल समेत 7 राज्यों में चीनी की जमाखोरी पर सख्ती। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, लगातार दूसरे दिन गतिरोध की भेंट चढ़ी विधानसभा की कार्यवाही। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, वंदे मातरम और राष्ट्रगान पर फिर हंगामा। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी के बाद 2 बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। दैनिक जागरण की एक खबर है, बिना मंजूरी पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे निजी विश्वविद्यालय। दैनिक भास्कर प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, 90 दिन पूरे होते ही रद्द हो जाता है निलंबन आदेश। शिक्षकों को बहाल करें, कर्मचारियों के निलंबन नियमों को लेकर कोर्ट का फैसला। पंजाब केसरी के अनुसार कर्मचारियों के निलंबन की समीक्षा निर्धारित 90 दिनों के भीतर होना अनिवार्य। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की सूचना की जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किन्नौर जिला में बनाए गए 386 मकान। मणिमहेश यात्रियों को हड़सर से गौरीकुंड के बीच उपलब्ध होगी BSNL की 2G सेवाएं। प्रशासन ने यात्रियों के लिए जारी किए एहतियाती उपाय। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जानें।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज जो विषय हमने लिया है वो है हृदय रोग कारण लक्षण और बचाव। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डार आमिन हमारे साथ हैं। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। विषय संबंधी कोई प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर लक्षण क्या रहते हैं हृदय संबंधी रोगों के।
1: जो हार्ट प्रॉब्लम्स में जो कॉमन जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स रहते हैं वो यूजुअली जो पेशेंट होता है कि पेशेंट को छाती में दर्द होगा या पेशेंट को जो यूजुअली एज, ये एज पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट 60 से यूजुअली 60 के अराउंड है या 60 से नीचे है तो उनमें टिपिकली जो है मोस्ट जो हम बोलते हैं बहुत छाती में जोर का दर्द होता है।
0: डॉक्टर साहब, आपकी बात को थोड़ा विराम देना चाहूँगा। कई बार साइलेंट हार्ट अटैक एक टर्म हम सुनते हैं जिसमें छाती में दर्द ही नहीं होता।
1: हाँ, वही मैं, अगर जो पेशेंट एक, अगर एल्डरली हमें पेशेंट बोलते हैं, मोर देन 60 ईयर एबो हैं, या पेशेंट को कोई लाइक शुगर प्रॉब्लम्स होते हैं
0: जी,
1: तो ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें जो यूजुअली जो छाती में टिपिकल सिम्टम जाता है, छाती में दर्द होता है, यूजुअली वो नहीं होता है
0: जी।
1: तो ऐसे पेशेंट इनमें कभी कभी छाती में थोड़ा भारीपन आ सकता है, या उनको लगेगा थोड़ी कि उल्टी का कच्चा मन हो गया है, या उनको लगे कि थोड़ा बहुत कोई मतलब चक्कर सा लग रहा है। तो यूजुअली उन, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं यूजुअली जो जो हमारे फीमेल पेशेंट होते हैं, जो एल्डरली फीमेल पेशेंट 70-80 ईयर के फीमेल्स होते हैं, या पेशेंट्स जिनको ये शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो इनमें वो ज़्यादा जोर का मतलब वो छत दर्द नहीं होता है। तो उनमें ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, या कभी कभी जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वो फैमिली या पेशेंट खुद भी इग्नोर करता है
0: जी।
1: तो अगर ऐसे सिम्टम्स को यूजुअली हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। जो और जो उनके सिम्टम्स होते हैं, या सांस में दिक्कत आ सकती है इसमें
0: जी,
1: या पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में
0: जी,
1: या उल्टी अचानक से हो जाए, या उसको स्वेटिंग हो जाए, या पसीना बहुत कोल्ड स्वेटिंग हो जाती है, तो ये कॉमन सिम्टमेटोलॉजी होती है ऐसे पेशेंट को जिनको हार्ट अटैक होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, कई बार सुनने में ऐसा आता है कि दांत में भी अगर सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, या बाजू तक अगर कभी दर्द जा रहा है, या किसी के पाँव में सूजन आ रही है, ये भी हृदय रोग से संबंधित हो सकता है, ये कितना सही है?
1: हाँ, जो ये आपने बोला जाम मतलब जा सकता है, ये हम उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन पेन। अगर एक जगह हमारा हार्ट जो होता है, ये जो दर्द है दूसरी जगह मतलब जा सकती हैं
0: जी,
1: तो ये होता है कि हार्ट अटैक में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी छाती में दर्द नहीं होगा, कभी हाँ पेशेंट के हाथ में दर्द होगा, या ये जो हम, या वो राइट हाथ में भी होगा और लेफ्ट हार्ट में भी होगा, और उनके शोल्डर, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर हो सकता है
0: जी,
1: और इवन की जो हमारे गर्दन है, नक नेक और लोअर जॉ हम बोलते हैं, वहाँ तक पेन हो जा सकता है
0: जी।
1: तो नीचे जो ऊपर पेट होता है, अपर वाला जो अम्बलिकस, ऊपर वाला अम्बलिकस जो हमारा ऊपर साइड, वहाँ तक पेन जा सकता है, जो ये हार्ट अटैक हो सकता है
0: जी। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, सुन पा रहे हैं हमें?
2: हाँ जी, आई योगेश जांगड़े, विनय करा छत्तीसगढ़
0: जी। जांगड़े साहब, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से।
2: दिल हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए

0: बॉडी वेट होता है उसको नॉर्मल रखना है। तो ये जो आपकी ये अभी हम डिस्कस करेंगे खाने खाने रिलेटेड
1: जी,
0: है
1: इस विषय
0: खान।
1: में हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे। फिलहाल जांगड़ी साहब, डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि हृदय को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है, और आप कार्यक्रम को ध्यान से सुनते रहिए किस तरह से स्वस्थ रखा जाता है, इस बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे लक्षणों के बारे में, और आपने कुछ लक्षण हृदय रोग के संबंधित बताए। किस तरह से हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं, किसी अन्य रोग के लक्षण भी हो सकते हैं, तो किस तरह से हम इनमें अंतर कर पाते हैं?
0: देखो इनमें जो हार्ट सिम्टम और भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें थोड़ा समटाइम्स वो डिफरेंस करना डिफ़िकल्ट रहता है
1: जी
0: इवन कि डॉक्टर्स के लिए भी। लेकिन अगर अगर पेशेंट को हार्ट रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, या जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हार्ट मतलब छाती में दर्द होता है, तो अगर इसके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, अगर किसी पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स जो ब्लॉकेजेस ज़्यादा होने का रिस्क रहता है,
1: जी
0: तो उनमें वो पहले हम सोच सकते हैं कि हार्ट की वजह से हो सकता है। जैसे
1: जी
0: अगर कोई पेशेंट उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी रहती है,
1: जी जी
0: शुगर है, स्मोकिंग करता है, इवन की फैमिली हिस्ट्री है और
1: आप
0: उसका
1: कहना ये चाहते हैं कि जो ज्यादा रिस्क पर होता है, जांच वहां से शुरू की जाती है।
0: हाँ उसमें जो हार्ट अगर उसमें छाती में दर्द हो सकता है या सांस में दिक्कत हो सकती है, तो हम उसमें कहें कि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है
1: जी।
0: एज़ कम्पेयर टू अगर हम करें कि कोई नॉर्मल बंदा है, उसका बॉडी वेट ठीक है,
1: जी
0: फैमिली
1: जी जी
0: हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, जो है लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी है, घर का खाना खाता है, तो जंक फूड नहीं खाता, तो उसमें ओबेसिटी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो उसमें चांसेस कम हो सकता है कि ये जो दर्द होगा ये हार्ट के कारण से होगा,
1: जी
0: क्योंकि और भी कारण होते हैं उसमें, जैसे कि किसी को एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है,
1: एसिडिटी
0: हाँ
1: है,
0: उसकी
1: गैस बन
0: वजह
1: रही
0: से, हाँ
1: है।
0: गैस बन रही है, उसकी वजह से भी उसको उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो वो भी एक कारण होता है।
1: जी। डॉक्टर साहब, इस तरह के लक्षण लेकर के जब मरीज आपके पास आता है, तो किस तरह से आप उसकी जांच कराते हैं, क्या-क्या जांच होती है?
0: देखो जब पेशेंट ऐसे सिम्टम्स में आ जाता है तो हमें पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो पहले डायग्नोज ऐसा बनता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें
1: जी
0: कितना चांसेस हो सकता है ये हार्ट रिलेटेड होता है, तो पहले वो तो हम डायग्नोज करते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि नहीं ये इसमें को हार्ट प्रॉब्लम की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं,
1: जी
0: तो तब हम जो कॉमनली करते हैं वो ECG करते हैं कि ECG पे कुछ चेंजेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल ECG है कि नहीं है। अगर
1: जी
0: उसके बाद और ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं, अगर जैसे कि हम बोलते हैं कार्डिक मार्कर्स होते हैं, कार्डिक मार्कर्स ऐसे होता है कि जब भी हार्ट में ब्लड फ्लो रुक जाता है ब्लॉकेज के कारण से, तो वहाँ से जो हार्ट मसल जो डैमेज हो जाती है वहाँ से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं,
1: जी
0: तो वो ब्लड में चले जाते हैं, तो उनको पिकअप हम करते हैं, तो उनके लिए टेस्ट्स हो जाते हैं जिनको हम कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं, तो वो टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं है।
1: जी
0: तो उसके बाद हम और भी टेस्ट करते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं कि ये कार्डियक, हम इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी हम बोलते हैं जो हम ऑपरेट में करते हैं,
1: जी
0: तो अगर हमें इसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो हमें उसको फिर कंफर्मेशन करने के लिए हमें एंजियोग्राफी जो हम बोलते हैं एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसमें हमें 100% पता चलता है कि ये ब्लॉकेजेस की वजह से हैं या नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, TMT भी एक जांच होती है।

0: ये भी किस तरह से की जाती है और क्यों की जाती है?
1: हाँ, TMT में हम अगर पेशेंट उसको एक अगर वो प्रेजेंटेशन उसकी आ रही चेस्ट पेन चल रही है
0: जी
1: तो उसमें यूजुअली हम TMT रिकमेंड नहीं करते हैं। हम TMT तब करते हैं अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स हैं, हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, और उसको यूजुअली जब वो काम पे करता है, काम करता है, ज़्यादा एग्जर्शन करता है,
0: जी
1: तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, छाती में भारीपन आता है या छाती में कभी डिस्कम्फर्ट आ जाता है या कोई पेन हो जाता है, तो उस टाइम में हम TMT करते हैं। TMT कोई क्या होता है, TMT ट्रेडमिल टेस्ट होता है, और ये एक्सरसाइज टेस्ट होता है।
0: जी
1: एक जो यूजुअली जब पेशेंट आता है तो रेस्टिंग पे हम जो टेस्ट ECG लेते हैं उसको हम ECG नॉर्मल बोलते हैं, अगर हम
0: जी
1: वही एक्सरसाइज भी करते हैं वही ECG करते हैं उसको हम ट्रेडमिल बोलते हैं,
0: जी
1: क्योंकि जब हमारे अगर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो एक्सरसाइज पे हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए
0: जी
1: पंपिंग के लिए। अगर नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है तो वो ब्लड फ्लो ब्लड कम जाता है ड्यूरिंग ऑल दो रेस्टिंग पे, तो वो ठीक रहेगा
0: जी
1: लेकिन
0: लेकिन
1: जब वो
0: जैसे वो
1: हाँ
0: चलने लगेगा या सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगा
1: हाँ
0: तो ये
1: ये
0: बढ़
1: उसमें
0: जाएगी
1: हाँ ये
0: प्रॉब्लम।
1: बढ़ जाएगी क्योंकि ब्लड आगे जाएगा नहीं, तो उसको छाती में दर्द हो सकता है या ECG में चेंजेस आ सकते हैं,
0: जी
1: तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हार्ट की वजह से है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, लगता है फोन कट चुका है। सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध, जब भी हमें फोन करें कृपया नेटवर्क जांच लें, नेटवर्क जांच कर हमें फोन करें, जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। जी डॉक्टर साहब, हम जांच की बात कर रहे थे, ट्रोप्टी भी एक जांच होती है, ये इसके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, जैसे कि मैंने ये भी ट्रॉप्टी, ये भी कार्डियक मार्कर्स में हम बोलते हैं ट्रॉप्टी होता है, ये भी जब हार्ट मसल ब्लॉक हो जाता है, हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, वहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं जिसको हम कार्डियक ट्रोपोनेंस बोलते हैं, जो उसको भी हम ट्रॉप उसको पिकअप करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं आजकल, जो हम कॉमनली किट्स किट टाइप होता है
0: जी
1: ट्रॉप्टी, ये क्वालिटी टू टेस्ट में आता है, क्वालिटी टेस्ट होता है जिसे हमें ब्लड पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं ये एंजाइम्स तो नहीं है, अगर ये होता है उससे इंडिकेशन पता चल रहा है कि जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो गई है
0: जी
1: तो ये हार्ट अटैक हो सकता है।
0: जी हेलो
2: हाँ सर,
0: जी, नाम बताइए।
2: हाँ सर, मैं डिस्ट का मित्र सर रणजीत सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी रंजीत जी, आज का कार्यक्रम जो है वो आप शुरू से सुन रहे हों तो आपको विषय पता होगा।
2: जी सर,
0: जी तो विषय संबंधी अगर आपका कोई प्रश्न है तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
2: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार।
2: सर जी, ऐसा है कि मेरी उम्र 65 साल है,
1: हाँ 65 साल।
2: तो मुझे ना कभी कभी नीचे जो पसड़ियाँ होती हैं इनके नीचे और वो दर्द होता है और वो छाती में आता है, और 5 6 7 साल हो गए, तो मैंने जैसे आप बोल रहे थे ट्रॉप्टी वो भी कराया, इको वगैरह, ECG, जो मेरे ब्लड के टेस्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, वो सब ठीक आते हैं। तो सर जी, अभी ये पता लगता है, अभी वो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी हम आपको क्या दवाई दें, तो गैस की गोली खाते रहो, तो सर जी ये तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए?
1: देखो, जो आपको दर्द है वो मतलब वो कंटिन्यूस रहता है या बीच में ठीक होता है, बीच में रहता है,
2: हाँ
1: कैसा
0: सर,
1: दर्द का दर्द है?
2: बीच में कभी कभी नहीं होता है ना, और कभी कभी 2 4 4 दिन में, मतलब वो भी कंटिन्यूस नहीं होता है, कभी कभी कभी होता है, और बीच में 5 7 घंटे ठीक निकलते हैं, कंटिन्यूसली नहीं हो रहता है।
1: ये दर्द वो काम करने पे ज़्यादा होता है?
2: सर जी काम तो हम अभी कुछ भी नहीं है काम यहाँ, लेकिन मैं जैसे दौड़ दौड़ता भागता हूँ, 10 हजार कदम दिन में वॉकिंग करता हूँ, तो उस वक्त मुझे ये ऐसा कुछ नहीं होता है।
1: अच्छा, उस टाइम नहीं होता है। तो जो ये दर्द की बात कर रहे हैं तो ये हार्ट रिलेटेड नहीं हो सकता है, उसका दर्द का कोई और कारण हो सकता है। उसमें आप डॉक्टर साहब का सलाह ले सकते हैं, जो वो डायग्नोज कर सकता है ये कोई और कारण हो सकता है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि मैं चलता हूँ काम करता हूँ तो तब तो नहीं होता है।
2: बिल्कुल नहीं होता है,
1: हाँ,
2: और
1: तब तो ये
2: क्योंकि मैं
1: हार्ट का दर्द नहीं हो सकता है।
2: कम से कम ना सर, मैं 180 सीढ़ियां हैं जो उनको मैं कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करता हूँ।
1: बस ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये हार्ट का रिलेटेड बहुत ही कम चांसेस है हार्ट का रिलेटेड ये दर्द होगा। आप अपने डॉक्टर साहब का सलाह ले सकते हैं, वो
2: तो
1: जांच
2: वो
1: कर
2: सर जी
1: सकता।
2: वो पेंटाप्रोजोल वगैरह और उसका इंजेक्शन लगा देते हैं ना सर?

0: नहीं, वो पेंटाप्रा वो उसका अलग जो होता है, उसका अलग इंडिकेशन होता है कि मतलब पेंटाप्रजोल
1: है?
0: का, हाँ वो गैस अलग है। लेकिन इसमें ये जो आप बता रहे हैं, जो दर्द बता रहे हैं, ये हार्ट का दर्द नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आप बोलते हैं काम करने पे, बहुत ही एक्सर्शन करने पे आपका दर्द नहीं होता है, ये आप ठीक होते हैं तब।
1: जी, और कुछ पूछना चाहेंगे?
0: नहीं सर, थैंक यू।
1: जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये बात इन्होंने कही कि गैस की वजह से भी ये दर्द होता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे। एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं।
0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी। राम राम।
1: जी, नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे
0: नमस्कार,
1: हैं?
0: मैं कृष्ण सिंह राणा बोल रहा हूँ, भिखंडिया से। डॉक्टर
1: जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
0: साहब जी, राम राम। अल्ट्रासाउंड राम राम। 70 ईयर ओल्ड, मेरे को स्टंट पड़ा है 2010
1: जी, अपने रेडियो सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए या उससे थोड़ा दूर हट जाइए, जिससे आपकी बात हम तक ठीक से पहुंचे।
0: में। अच्छा, स्टंट पड़ा है मेरे को 2010 में, तो उसकी पंपिंग जो आती है अभी नहीं तो कराया 3 महीने अंडा में, 45% दिखाई डॉक्टर ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी परसेंटेज चाहिए हार्ट की पंपिंग की, मतलब कितना तो बंदा ठीक है? वैसे तो मेरे को प्रॉब्लम इतनी कोई खा नहीं, दवाई खाता हूँ।
1: जी, अभी आपको क्या समस्या आ
0: समस्या
1: रही है ये बताइए।
0: ये थोड़ा सिर में चक्कर हो जाता है, रुमन
1: चक्कर आने की
0: लगता है।
1: डॉक्टर साहब इनको समस्या है, इनको स्टंट डल चुका है, उसके बाद भी चक्कर आ रहे हैं।
0: देखो, जैसे आपने आपके हार्ट में प्रॉब्लम थी तो स्टेंट डॉक्टर साहब ने डाला है, तो आपकी जो हार्ट पंपिंग पावर, हार्ट हार्ट भी आपको कमज़ोर है। तो अगर इस अगर ऐसे पेशेंट को चक्कर आते हैं कभी कभी, तो उनमें उसमें और जांच करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो हार्ट अटैक पहले हुआ है उसकी वजह से जो वहाँ पे जो हार्ट डैमेज होता है, वो कभी कभी वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल बीट आती है, और जो जो कभी कारण होता है चक्कर आने का, तो उसमें आपको डॉक्टर साहब के साथ ये डिस्कस करना है, और वो और उसमें टेस्ट होते हैं हमें, जो हमें जिसे हमें पता चलता है कि ये वो कारण तो नहीं है। जो एरिदमिया प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, उस एरिदमिया प्रॉब्लम्स को देखना है कि वो कब, वो ऐसे पेशेंट में वो कारण होता है। अगर वो कारण पता चले तो उसके लिए और जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो होता है, तो उसमें पहले वो हमें पता चले कि वो एरिदमिया की प्रॉब्लम से वो तो नहीं है।
1: जी सर, और कुछ पूछना चाहेंगे?
0: आप डॉक्टर साहब में कांडा में तो कम मिलते हैं?
1: जी डॉक्टर साहब बाद में अपना फ़ोन नंबर आपको दे देंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ से ट्रीटमेंट चला रहे हैं, जहाँ से आप दिखा रहे हैं, आप वहाँ से भी सलाह ले सकते हैं।
0: हाँ, तो डॉक्टर
1: जी
0: मुकुल थे ना जी, वो तो चले गए, इनसे चलता था मैं।
1: जी कोई बात नहीं, उनकी जगह कोई और भी आ गए होंगे, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में समय हमारे पास थोड़ा कम बचा है, जल्दी जल्दी आपसे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और सवालात हम आपसे करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हृदय रोग अनुवांशिक हो सकता है?
0: देखो, जो हमारा हार्ट जो हमने डिस्कस किया, जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनका जो प्रिवेंशन
1: जी
0: प्रिवेंशन ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है।
1: जी जी
0: हम जो हार्ट अटैक होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: लेकिन क्या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है ये, या
0: जो हार्ट अटैक जेनेटिक प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का एज सच तो नहीं है, मतलब ये जेनेटिक होता है।
1: जी।
0: जो एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ये होता है कि जो ब्लॉकेजेस होता है उसमें बोलते, वो भी एक होता है, एक सेट ऑफ पेशेंट्स होता है
1: जी।
0: जिनमें प्रीमेच्योरली जो ये ब्लॉकेज होता है और उनमें जो हार्ट अटैक आते हैं,
1: जी
0: तो प्रिवेंटेबल हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें प्रिवेंशन जो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि जो प्रिवेंशन है कि इसमें आपको जो अपना जो कोलेस्ट्रॉल है, अपना जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: ट्राइग्लिसरीड्स बोलते हैं, तो उनको आपको कंट्रोल करना है। उसमें पीरियडिक पीरियडिक चेकअप्स करने हैं,
1: जी
0: उसको कंट्रोल करना है, और जो अपना बॉडी वेट है आपको वो कंट्रोल करना है।
1: जी
0: अगर कोई पेशेंट को कोई ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, उनको शुगर को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जो शुगर है उसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट वो ज़्यादा होती है।
1: और साथ ही जो अपना उच्च रक्तचाप वाले जो मरीज हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे, उस वजह से भी हृदय संबंधी रोग बढ़ सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर,
0: हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट होते हैं उनमें भी अगर उनका बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा,
1: जी
0: उनका बीपी नॉर्मल से ऊपर रहेगा, तो उसकी वजह से वो भी एक कारण रहता है कि हार्ट अटैक ज़्यादा होने का।
1: जी जी जी।
0: तो ये सारे जो ये चीज़ें हमने जो मैंने हम डिस्कस किए हैं, जैसे कि उसका पहले तो जो स्टार्टिंग करेगा वो जो उसका खान पान कैसा रहता है।
1: जी डॉक्टर साहब, खान पान के विषय में हम बात करेंगे। आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में अभी बताया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जो ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। कई बार डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, कई बार तो बच्चों में भी ऐसा हो जाता है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु तक हो जाती है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जो जो कोलेस्ट्रॉल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कारण होता है हार्ट अटैक होने का। जो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उनको ब्लॉकेज ज़्यादा होती हैं, तो वो ब्लॉकेज फिर कारण होता है उनको हार्ट अटैक आने का।
1: लेकिन कई बार मरीज अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराता है लेकिन उसको कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हृदय संबंधी रोग से वो जूझ रहा होता है, ऐसे में क्या करें?
0: हाँ, जो उनके जो ऐसे ग्रुप जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, तो उनमें जो अगर हार्ट में और भी प्रॉब्लम्स हो, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जीन में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको जो एरिथमियाज हम बोलते हैं, जिसको रिदम प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से भी वो एक कारण होता है जो ऐसे पेशेंट होता है उनको कभी अचानक से उनको चक्कर आ जाना है या उनकी उनकी डेथ हो जाती है, तो वो भी है एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हार्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो हार्ट हमारा होता है उसके साथ वो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से ऐसे पेशेंट को, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ उसकी एज कितनी है, चाहे वो यंग हो चाहे वो ज़्यादा, मतलब उसकी एज ज़्यादा है, तो यंग में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, चैनलोपैथीज हम उसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं, इसमें जो चैनल्स हार्ट में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चैनल्स होते हैं, उनमें कुछ म्यूटेशंस हम उसको म्यूटेशन होते हैं, तो उसकी वजह से कि उनके हार्ट में एक रिदम प्रॉब्लम हो जाती है, जब रिदम प्रॉब्लम हो जाती है तो अचानक हार्ट बैठ जाता है, तो उस समय वो पेशेंट गिर सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है।
1: जी।
0: तो ये पॉसिबल है।
1: डॉक्टर साहब, धूम्रपान या मद्यपान, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हृदय पर?
0: हाँ, ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग ऐसे पेशेंट को जो हमारे पास आते हैं उनमें जो स्मोकिंग भी एक बहुत कॉमन कारण है, होता है जो हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इवन के हमने देखे हैं कि जो इनकी सारे नसों में जो स्मोकर्स होते हैं, हैवी स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं। तो अगर अपना हार्ट को, जो अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, तो बेस्ट ये है, उसके लिए हम, मेरी एडवाइस यही है कि वो अवॉइड करे, स्मोक ना करे।
1: जी डॉक्टर साहब, नींद का कितना प्रभाव रहता है, कम नींद लेने वालों में कितनी संभावना रहती है हृदय रोग होने की?
0: नींद भी एक बहुत ही अहम एक फैक्टर होता है हमारी हार्ट हेल्दी हार्ट के लिए।
1: जी,
0: जो हार्ट हेल्दी रिलेटेड रखना है पेशेंट को, उनको 7 से 8 घंटे की जो साउंड स्लीप होती है वो बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी,
0: क्योंकि स्लीप, जब वो साउंड स्लीप, जब पेशेंट एक साउंड स्लीप उसकी होगी, तो वो उसका अपना वो ब्लड शुगर, वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी जो स्लीप होती है वो बहुत ही कम होती है, तो वो भी बहुत से टाइम कारण होता है उनका, बीपी बढ़ जाना।

0: आपकी चीज़ें हो जाने, तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी होता है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ऐसे में हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कारण होते हैं, जो जो यंग पॉपुलेशन हमारी हुआ है ना, उनमें भी जो आजकल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, चाहे कैरियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, तो जो ये स्ट्रेस होता है, अगर ये बहुत समय का होगा तो ये तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ही जो स्ट्रेस है क्रोनिक बन जाता है, बहुत लंबे का बन जाता है,
1: जी,
0: तो
1: तो
0: उसकी
1: ऐसा
0: वजह से
1: इलाज ना कराने के कारण होता है, या जो स्ट्रेस क्रोनिक हो जाता है, इलाज ना कराने के कारण होता है या कोई और कारण होता है इसका?
0: हाँ, इलाज ना कराने का कारण कॉमन होता है कि जिसको 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल, 2 साल, 3 साल से चल रहा है,
1: जी,
0: वो स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, तो वो कारण होता है कि जो हमारे हार्ट में जो नाड़ियाँ होते हैं उनमें ब्लॉकेज ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं हमारे दोस्त, आप उनके लिए बताइए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उनकी?
0: देखो, जो भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें मेरी एडवाइस ये है कि उनको जो खान पान हो उसमें ज़्यादा फल फ्रूट का इस्तेमाल करें वो,
1: जी
0: और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, और जो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ले, लीन प्रोटीन ले,
1: जी
0: और जो फैट है, जो सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम, इसका इस्तेमाल कम करें।
1: जी
0: जो साल्ट बहुत है, जो साल्ट डाइट कम कम रखें, शुगर, जो आजकल जंक फूड जो होता है, अनहेल्दी जो डाइट होती है, अनहेल्दी फूड होता है, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जो एडिड शुगर्स होते हैं,
1: जी
0: सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, तो इन चीज़ों का कम कम इस्तेमाल करें।
1: जी डॉक्टर साहब, व्यायाम यानी एक्सरसाइज की कितनी आवश्यकता होती है एक हृदय संबंधी रोगी को?
0: हाँ, देखो, फिज़िकल एक्टिविटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए।
1: जी
0: जो दिन में 20 से 30 मिनट तक एवरी डे जो ब्रिस्क वॉक करना है, तेज़ चलना है,
1: जी
0: तो एवरी डे ये रूटीन होना चाहिए। जो भी हार्ट पेशेंट हैं या जिसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुई है,
1: जी
0: तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी में एवरी डे अपना आधा घंटा निकालें, वो फिज़िकल एक्टिविटी करें,
1: जी
0: उससे उसका जो होता है हार्ट हेल्दी रहता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा व्यायाम करने के कारण भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत कम बचा है।
0: हाँ, जो मैं बताऊंगा कि जो जो एक्सरसाइज करना है वो उसको आपको मॉडरेशन पे रखना है, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं करना है, जो मॉडरेशन एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत ही ठीक है।
1: जी, डॉक्टर साहब, अब समय बहुत ही कम बचा है हमारे पास, और हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो किस तरह से अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: देखो, मैं ख़त्म करने से पहले मैं आपका आकाशवाणी धर्मशाला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है लिसनर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो मेरी मैसेज यही रहेगी कि अपना जो खान पान ठीक रहे, नींद पूरी करें, और अपना जो स्मोकिंग स्मोकिंग ना करें, अपने वज़न को कंट्रोल रखे, शुगर को कंट्रोल रखे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे, और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले।
1: जी, और
0: तो
1: कुछ
0: ये,
1: भी प्रॉब्लम या समस्या आ जाने पर अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें।
0: हाँ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा हो तो अपने जो डॉक्टर साहब हैं उसका ज़रूर सलाह लें।
1: जी डॉक्टर जयरामीन, आप आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में आए, बहुत अच्छी जानकारी हृदय संबंधी रोगों के बारे में आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
1: जी दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि किस तरह से अपने हृदय को आप स्वस्थ रख सकते हैं, और हम तो यही कहेंगे, अच्छा खाइए, खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए, और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को अब तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुनील कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाज़त।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं गीतों का कारवां यह कार्यक्रम लेकर। और आज हाजिर है आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण, सभी श्रोताओं को हमारा सुप्रेम नमस्कार। तो श्रोताओ, हाजिर है आपके रेडियो सिर्स पर राजा भैया फिल्म का ये बेहतरीन संगीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति ने, समीर की बोल नदीम श्रवण का संगीत है।

गीतों का कारवा ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण के संग। और श्रोताओं, आज कुछ ऐसे चुनिंदा गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जिनको सुनकर आपको भी कहीं थोड़ा बहुत एहसास होगा। छुपा रुस्तम फिल्म से अगला गीत आपकी रेडियो सेट्स पर। अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज, आनंद मिलिंद का संगीत, बोल आनंद के। तो श्रोतो, महसूस कीजिए इस खूबसूरत से एहसास को।

बड़ा दिन इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाजें, जतिन ललित का संगीत है।

सरहद पार फिल्म को गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। जसविंदर नरूला की आवाज, बोलदेव कोहली की और संगीत आनंद राज आनंद का।

अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं हद कर दी आपने इस फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आनंद राज आनंद की खूबसूरत सी आवाज है, बोल आनंद राज आनंद की।

इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कारवाई कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हाजिर होते हैं कुछ ही क्षणों में अगले कार्यक्रम में आपसे।

तो श्रोतो, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं अपने अगले कार्यक्रम के साथ, पहाड़ों के सुर। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बलदेव सिंह व साथियों की आवाज में गाए माता की इस भेंट के साथ।

पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र के साथ।

पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे लीला भंडारी की आवाज को।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। वर्ष 2006 में 62 टीवी चैनलों की तुलना में आज 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियों विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जनजातीय जिला किन्नौर में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना

0: के तहत जिले में 386 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनजाति जिला किन्नौर में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 601 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार 600 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया और 599 मकानों को मंजूरी मिली। इनमें से अब तक 386 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। ब्लॉकवार देखे तो कल्पा में 73, निचार में 192 और पूह में 121 मकान पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध करवाना है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: मणिमहेश यात्रियों को इस बार हड़सर से लेकर गौरीकुंड तक बीएसएनएल की 2G सेवाएं मिल पाएंगी। पहले हड़सर से मणिमहेश तक मोबाइल सिग्नल न होने के कारण ये क्षेत्र ब्लैक जोन रहता था और 13 किलोमीटर के पैदल सफर के दौरान यात्री अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाते थे। जिला प्रशासन के प्रयासों से धनछो में बीएसएनएल का टावर स्थापित किया जा रहा है, जो 4 सितंबर से शुरू हो रही मणिमहेश यात्रा से पूर्व कार्य करना शुरू कर देगा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मणिमहेश यात्रियों को संचार की सुविधा देने के लिए ये पहल की गई है। इस बीच उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की कि पंजीकरण के उपरांत ही मणिमहेश यात्रा पर जाएं।
2: बीएसएनएल के माध्यम से 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक धनचो पे टावर है एस्टैब्लिश करने का कार्य किया जा रहा है। टावर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जो उनके बीटीएस लगते हैं जिसके बाद रेडिएशन स्टार्ट होती है वो भी यात्रा से पहले पहले 20 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बीएसएनएल का एटलीस्ट आपके पास 2G नेटवर्क जो है वो नीचे हमारे हडसर से लेके ऊपर आपके गौरीकुंड तक अवेलेबल रहेगा, ताकि जो एक पूरा ब्लैक आउट जोन बन जाता था वो इस बार की यात्रा में हमें देखने को नहीं मिलेगा।
0: रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजधानी शिमला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मंडी में पिछले 8 घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं कुल्लू में भी आज सुबह बारिश का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 28 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इस अवधि के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश भर में भूस्खलन से 98 सड़कें और 89 बिजली ट्रांसफार्मर तथा 42 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। संबंधित विभागों द्वारा इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच सिरमौर जिला के गिरी जटौन डैम से आज शाम 7 बजे पानी छोड़ा जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुरक्षा के दृष्टिगत स्थानीय लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगोष्ठी।
4: श्रोताओं, जैसे कि आपको विदित है कि हम इस कार्यक्रम में संगोष्ठी के अंतर्गत अनेक विधाओं में जो महारत हासिल किए होते हैं उन लोगों से बात करते हैं, तो आज ऐसे ही एक महानुभाव हम संग हैं, डॉक्टर जन्मेजय सिंह गुलेरिया। इनके बारे में बात करते हैं, जो कि प्राध्यापक हैं और साथ में जो है इन्होंने जो पढ़ाई की है बीएससी बीएड एमएससी एमफिल गणित में की है, एमए संगीत में की है और फिर संगीत विशारद है, संगीत भास्कर है, संगीत चूड़ामणि में जो इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, इन्होंने पीएचडी की है संगीत में, जिसमें जो है गायन जो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से की है। जन्मे जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर
4: जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अनेक राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अनेक प्रकार की विधाओं में गायन किया है, शिक्षा के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में आपने

0: कई मुकाम हासिल किए हैं, जिनमें राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मान हैं आपने प्राप्त किए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि गणित और संगीत दोनों एक गंभीर और अनुशासित विषय माने जाते हैं, अपने आप में इन दोनों क्षेत्रों के साथ साथ आपने जो है समन्वय कैसे बनाया है, इसमें तालमेल कैसे बिठाया है, आप इन विधाओं में महारत हासिल कर चुके हैं।
1: जी ठाकुर साहब, मैं बताना चाहूंगा कि घर में जो माहौल ऐसा था कि मुझे संगीत की रुचि जो जगी वो अपने पिता श्री देसराज गुलेरिया जी के माध्यम से जगी। उनसे बचपन में जब वो हारमोनियम लेके आए घर में, तो मैं छोटा सा था, और उसमें जब वो कभी अपने स्कूल चले जाते थे या कभी सामने नहीं होते थे, तो मैं पीछे से वो हारमोनियम जो था वो बजाया करता था। और मुझे लगता है कि 6-7 साल की आयु में मैं हारमोनियम जो है वो बजाना शुरू किया, और जब मैं 6th-7th क्लास में जब मैं पहुंचा, तो मैंने 1 या 2 गीत जो वो तैयार कर लिए जो पिताजी गाते थे। और उसके बाद फिर पिताजी खुद विज्ञान और गणित के अध्यापक थे, और मेरे बड़े भाई भी, उन्होंने भी MSc मैथमेटिक्स में किया, तो पिताजी के सामने मैं नहीं गाता था। तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपनी BSc कंप्लीट करो, MSc कंप्लीट करो, लेकिन मुझे वो साथ साथ मेरे संगीत जो चलता रहा, चाहे वो विद्यालय काल में, चाहे वो महाविद्यालय में, चाहे वो विश्वविद्यालय में गया, तो संगीत मेरे साथ साथ चला। तो जब मैं जॉब में भी आ गया अपनी, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, संगीत को मुझे साथ रखना है, और मैंने फिर प्राइवेट MA की संगीत में, और फिर वो गणित और संगीत का जैसे आपने कहा कि कॉम्बिनेशन कैसा बना, तो गणित में भी वो कैलकुलेशंस हैं और संगीत में भी एक वही नियम है, स्वर बद्ध कैसे किया जाता है, तो उसके भी वही चीज देखी जाती है।
0: जी, आपने जो है विज्ञान विधा से पढ़ाई की है, विज्ञान विधा वाले जो छात्र जो है काफी गंभीर स्वरूप में होते हैं, कहीं ना कहीं जो है दुनियादारी से अलग से जीते हैं, तो ऐसे में जो है संगीत जो है कहीं ना कहीं आपको जोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ समाज के साथ।
1: बचपन में जब पिताजी से सीखा, उसके बाद जब मैं विद्यालय में नगरोटा सूर्य में मेरी मैट्रिक हुई, तो मेरे पूजनीय गुरु आदरणीय KC कंबर जी ने मुझे काफी प्रोत्साहित किया उस समय, कि जब मैंने वो 1-7वीं क्लास में अपनी प्रस्तुति दी, यशोमती मैया से बोले, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना दूं।
0: जी जरूर।

0: तो इस गीत से मेरी शुरुआत हुई थी सातवीं क्लास में, और जब मैं दसवीं में पहुंचा तो जैसे मैंने बताया कि सी कंवर जी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आगे कॉलेज में जब जाएंगे तो संगीत का साथ आपने नहीं छोड़ना है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में डीएवी कॉलेज कांगड़ा में जब मैंने 1989 में ग्रेजुएशन की तो उस समय मुझे गजल गाने का सौभाग्य मिला, और क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे पिताजी कहते थे कि नहीं अपनी पहले पढ़ाई करो, लेकिन मैं जब अंतिम मेरा वर्ष था तो उसमें मैंने जब इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ तो उसमें मैंने गजल गाई रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, तो वहां से मुझे थोड़ा लगा कि नहीं मुझे संगीत की ओर जो झुकाव हो रहा है और मेरी रुचि बढ़ रही है और मुझे आगे संगीत के विषय में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन तो ऑलमोस्ट उस टाइम होने वाली थी। अगर आप चाहें तो मैं रंजिश ही सही जो मेरा कॉलेज का वो जो गजल थी
1: जी,

0: एक मुश्किल गजल थी, लेकिन लगातार मुझे लगता है कि 15-20 दिन अभ्यास किया था और यहीं से मुझे थोड़ा सा ऐसे आत्मविश्वास जगा कि मैं गजल भी गा सकता हूं। तो उसके बाद जब मैं बीएड कॉलेज धर्मशाला में बीएड करने आया तो मुझे आदरणीय स्वर्गीय देशबंधु शर्मा जी, उनके संपर्क में जब आया तो उनसे फिर विधिवत मैंने प्रशिक्षण लिया और फिर संगीत भूषण, संगीत विशारद, संगीत भास्कर और संगीत चूड़ामणि, ये मैंने 9 साल लगभग उनसे सीखता रहा और मैंने संगीत में इक्विवेलेंट एमए कर ली।
1: अच्छी बात है जी, यानी कि त्याग की भावना जो है कहीं ना कहीं आप में कूट के भरी थी कि मैंने पढ़ाई की है जो विज्ञान विधा से है, उसके साथ साथ जो है आपने संगीत के क्षेत्र में भी मुकाम हासिल करना है
0: जी।
1: तो आपने जो है अनेक कार्यक्रम किए हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी, तो ये बताइए कि जो गायन विधा है आपने जो है कितने जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, कुल मिला के कितने गीत गाए आप?
0: ठाकुर साहब मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरी ये संगीत भास्कर इक्विवेलेंट टू एमए हो गई थी और मैं 2003 में संगीत प्राध्यापक के रूप में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाहपुर में कार्यरत हुआ, क्योंकि उस समय तो फिर मैं 12 साल जो है वो गणित और विज्ञान का अध्यापक रहा 1992 से लेकर 2002 तक। 2003 में जब मैंने संगीत प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू की तो मुझे लगा कि संगीत जो है अब मुझे इसको और ज्यादा सीखना है, तो 2003 से लेकर फिर मैंने विधिवत प्रशिक्षण लिया अपने गुरुजी से। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पूजनीय गुरु डॉक्टर सौभाग्य वर्धन बृहस्पति, जो रामपुर सदारंग घराने के अग्रणी प्रतिपादक हैं और आचार्य बृहस्पति जी के सुपुत्र हैं, वहां से मैंने विधिवत प्रशिक्षण लिया और उसके बाद फिर मैंने शास्त्रीय संगीत की जो विधिवत शिक्षा ली वहां से। आपका प्रश्न था कि
1: आपने जो कौन कौन सी विधाओं में गाए हैं?
0: पहाड़ी तो भाषा बोली हमारी अपनी है ही, उसके साथ जब मैं 1995-96 में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तलनू है नड्डी में, वहां पे जब मैं 2 वर्ष वहां पे गणित का अध्यापक रहा तो वहां पे जो बच्चे थे वो मराठी, बंगाली, हिंदी, पहाड़ी ये सारे भजन गाते हैं वहां पे, और आपको शायद याद नहीं होगा उन बच्चों की प्रस्तुति यहां हमने इस आकाशवाणी में भी दी है। मराठी में भी मैंने बहुत सारे भजन सीखे, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना सकता हूं।
1: मराठी में जो है एक भजन सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: जी।

0: चलिए बंदना जो है आपने मुझे अपनी याद दिला दी कि मैं भी महाराष्ट्र में पढ़ाई की है।
1: अच्छा,
0: तो मराठी में जो है विठल
1: कृष्ण भगवान जी को
0: जो है बहुत मानते हैं, बहुत पूजा
1: आराधना
0: होती है उनकी और वहाँ जो है यात्रा भी लगती है इस संबंध में।
1: जी जी।
0: तो इसके अलावा आपने जो पहाड़ी में गाए हैं, नेपाली में भी गाए हैं सुना है,
1: जी जी,
0: और कौन कौन सी भाषाओं में?
1: मुझे गोरखाली में भी गाने का अवसर मिला है, मास्टर मित्र सेन साहित्य संगीत सभा है, उनसे मैं जुड़ा हूँ। जब मैं खन्यारा में कार्यरत था तो वहाँ भी गोरखाली बच्चे थे, तो मुझे उत्सुकता रहती है कि कहीं ना कहीं हम दूसरी भाषा को भी सीखें। जैसे आपने कहा संगीत की कोई भाषा नहीं होती है लेकिन वो आनंददायक होती है, तो गोरखाली में मैं आपको एक छोटा सा भजन सुना रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल, अंतरा सुना दीजिए।

0: हमें लगता है कि अब आपकी जितनी जो इतनी विधाएं आप जानते हैं, इतनी विधाओं में आपने गायन किया है, कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं को भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार के जो आप में जो है इसमें जो है त्याग की भावना है, क्योंकि त्याग की भावना ना हो तो कोई भी संगीत, कोई भी कार्य जो है सुचारू तरीके से नहीं किया जा सकता।
1: जी,
0: तो ऐसे में जो है जो कांगड़ी लोकगीत है, गद्यालवी लोकगीत है, उसके बारे में कुछ बताइए जो आपका मन पसंद हो, जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में जो है ये अच्छा जो लोक बोली का जो है एक गीत बना है,
1: जी
0: उसमें से कुछ आप गायन करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे।
1: जी, मैं ठाकुर साहब बताना चाहूँगा कि जब मैंने कांगड़ा के जन्म गीतों के ऊपर शोध कार्य किया, तो सबसे पहले मैं पूजनीय डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथे जी के संपर्क में आया जब मैं शापर था।
0: जी
1: तो उस समय मैंने जो शोध कार्य किया उनसे दिशाएं भी ली, मार्गदर्शन भी लिया। आदरणीय गौतम जो खुद लोक संस्कृति के अध्येता हैं और मर्मज्ञ विद्वान हैं, तो उनके साथ मैंने परियोजनाओं में संगीत नाटक अकेडमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तीन परियोजनाओं जन्मगीत, छिंझोटी और ढोलरू गायन में मैंने स्वरांकन किया उनके साथ। और उसके बाद फिर मैं धर्मशाला आ गया। तो जब मैं अपना शोध कार्य कर रहा था कांगड़ा के जन्म गीतों को लेकर, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम थी, या मैं ये कहूँ कि मैं एक साइंस का छात्र था, तो साहित्य में इतना परिपक्व नहीं था, तो मैं प्रोफेसर चंद्ररेखा डिडवाल जी का नाम आदर सहित लेना चाहूंगा
0: जी
1: कि उनके
0: जरूर,
1: जब सानिध्य में आया तो वहां से मेरी जो है साहित्यिक और पहाड़ी भाषा में काफी सुधार हुआ। वर्तमान में भी मैं उनसे सीख रहा हूँ।
0: जी
1: उनके संपर्क में आने के बाद मुझे कांगड़ा के जो हम जन्म गीत थे उनके ऊपर जब शोध कार्य किया, तो लगभग 126 गीत जो थे वो हमने संकलित किए। और उस समय क्या होता था कि मोबाइल नहीं होता था,
0: जी
1: तो मैं टेप रिकॉर्ड लेके घर घर जाता था, कभी नेरटी, कभी मतलब कांगड़ा जिला के लगभग क्षेत्रों में मैं घूमा हूँ टेप रिकॉर्ड लेके, और उन गानों को रिकॉर्ड करना, जो लोक नारियां गा रही हैं उनकी मानसिक धरातल तक जाना। कई बार तो जैसे वो कॉन्शियस हो जाती थी कि हम गाना नहीं सुनाएंगे, तो ऐसे मतलब तरीके से उनसे रिकॉर्डिंग ली कि थोड़ा मुश्किल था वो मेरे लिए। 4 साल मुझे लगे शोध कार्य में। तो उसमें मैंने जन्म गीत बहुत सारे सीखे और
0: जी
1: उनका फिर स्वरांकन किया। तो आपके आकाशवाणी में भी वो मैंने बहुत सारे गीत गाए हैं, जो जन्म गीत जो कोई नहीं गाता, क्योंकि हमारे संस्कार जो है वो आप दिन प्रतिदिन जो है वो लुप्त प्राय हो रहे हैं। तो मैं एक गीत सुनाना
0: जी
1: चाहूंगा आपको।

0: चरखा बड़ा घूमेदार, ये जन्म गीत है। उसके बाद मैं ठाकुर साहब बताना चाहूंगा कि जब मैंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी का जो विषय चुना, वो भी प्रोफेसर चंद्ररेखा डढ़वाल ने ही उसको सुझाव दिया कि ये जो है इसके ऊपर काम करिए। उससे पहले मैं आदर सहित एक नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह गुरंग जी का
1: जी।
0: जो विश्व विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरासिया जी के साथ उनके शिष्य भी रहे हैं और उनके साथ उन्होंने संगत भी की है। तो जब मैं 2009 से लेकर 12 तक मैं अपना प्रथम शोध कार्य कर रहा था, तो डॉक्टर बेथे जी ने उन्हीं का नाम सुझाया था कि आप उनके मार्गदर्शन में के निर्देशन में ये जो है वो काम करिए। तो मुझे आदरणीय गुरंग जी से वो जो स्वर लिपि जो बनाते हैं पहाड़ी गीतों की, वो उनसे मैंने स्टीक जो है वो चीज सीखी उनसे। और फिर मैंने और गुरु जी ने मिलकर एक आकाशवाणी का आपका कार्यक्रम भी था, आकाशवाणी के कार्यक्रम का जो कार्यक्रम था जिसमें लोकगीतों के संरक्षण की एक पहल चली थी, तो उसमें लोकगीतों का संकलन करना है, उनका लेखन करना है और उनका स्वरांकन भी करना है। तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र गुरंग जी के साथ लगभग हमने 350 गीत जो थे वो उनका संकलन करके उनको स्वरांकित किया था, जो आज मुझे लगता है कि आपकी आकाशवाणी में वो विद्यमान होंगे। जब प्रोफेसर चंद्ररेखा डढ़वाल जी की मैं बात कर रहा था कि उनके मार्गदर्शन में मैंने जब कांगड़ा, जो मेरा विषय था वो पीएचडी का, कांगड़ा के नारी केंद्रित लोकगीतों का संगीत के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी कि हमारे जितने भी संस्कार गीत तो ज्यादातर लगभग लोक नारियों ने ही गाए हैं, स्त्रियों ने ही गाए हैं। उसके बाद अगर बिरह वियोग या छिंजोटी के गीत हैं, वो भी बिरह प्रेम, तो वो भी उनमें नारी, उसमें भी नारी ही मुख्य पात्र रही है। और अगर लोक गाथा की बात करें तो लोक गाथाओं में भी जो त्याग बलिदान और द्वेष ईर्षा, ये सारा का सारा नारियों के हिस्से में, जैसे आपने रुल्ला दी कुल है, कड़ोई दी बाएं, रानी सुई है, इसमें नारियों को ही वो एक बलि के रूप में चनवा दिया गया था। फुलमू रांझू की बात करें, रानी छरमरी की बात करें, कंडड़ी की बात करें, तो नारी पात्र ही ज्यादातर प्रमुख हैं। तो इन गीतों पे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे पहाड़ी गीत, जैसे आप बात कर रहे थे सुहाग गीत जो हैं, अब सुहाग गीत सौभाग्य के सूचक गीत माने जाते हैं, जो शादियों से 10-15 दिन पहले शुरू कर देते थे उनको, वर्तमान में तो वो शायद वो चीज नहीं रही है, तो वो गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। और हमने ना भाषा संस्कृति विभाग की तरफ से भी, हमने जब कोरोना काल था तब भी ये लाइव कार्यक्रम किए जिसमें हम छिंजोटी को लेकर करते थे, या कभी सुहाग गीतों, कभी विवाह गीतों, कभी जन्म गीतों के ऊपर ये बहुत सारा काम किया है। मैं आपको सुहाग गीत एक सुनाना चाहूंगा जो मुझे बहुत प्रिय है, अगर आप चाहें तो मैं दो भी सुना दूं।

0: इसमें
1: अति सुंदर
0: जो सुहाग गीत है इसमें माँ और बेटी का संवाद है, तो वो बेटी जो है वो माँ को कह रही है कि नूह और पुत्र को तो आपने साथ में रखा है, लेकिन धीयों को जब वो शादी हाँ तो उनको दूर बिछोड़ा। हाँ जी जी जी जी। और एक और बड़ा सुंदर गीत है।

0: गायन में जो आप पूरी तरह से अपने आप को जो आपने समर्पित किया है, ऐसे में जो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आप गणित भी पढ़ाते होंगे स्कूल में।
1: ऐसा है कि एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से जो हम बच्चों को दे पाते हैं, और हमें रिटर्न में क्या मिलता है, जब बच्चा अच्छी पोस्ट पे या अच्छे पद पे कहीं पहुंच जाता है और अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि वो रोजी रोटी कमाने शुरू कर दे, तो मुझे लगता है वो शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी, तो ऐसे में जो है आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे कहीं उच्च मुकाम हासिल करते हैं गायन में या पढ़ाई के क्षेत्र में या दूसरे पदों पर आसीन होते हैं, तो कैसा लगता है और कौन कौन से बच्चे हैं, किस दिन पदों तक पहुंचाए आपने? जी
1: ठाकुर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं डीएवी स्कूल में 1991 में, मुझे 36 साल जो है वो अध्यापन करते हो गया है, तो 1991 से 95 तक जब मैं डीएवी स्कूल में रहा, तो वहाँ पे अच्छे बच्चे जो थे वो वहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। जी जी जी और डीएवी स्कूल जो था बागनी, जो हिमाचल के दूसरे नंबर पे था, एक डीएवी स्कूल नरवाना पहले नंबर पे था, तो वहाँ से जो बच्चे निकले हैं आज मुझे खुशी होती है कि वो अपने कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में या कहीं अच्छे डॉक्टरी लाइन में बहुत ज़्यादा हैं। 7-8 बच्चे जो हैं वो बड़मूरा ट्रायंगल अमेरिका में, कनाडा में जो हैं वो डॉक्टर हैं, मैथ और साइंस जिनको मैंने पढ़ाया है।
0: तो आज भी उनके फोन आते हैं
1: जी
0: क्या?
1: बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है कि आज हम फेसबुक पे जुड़े हैं, जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या जब भी वो करते हैं तो एक दूसरे को अप्रिसिएशन मिलती रहती है। कुछ वकील के पद पर हैं, और इंटरनेशनल स्कूल में जब मैं रहा तो वहाँ पे वर्ल्ड वाइड कोई सेक्रेटरी पोस्ट पर भी है एक लड़का हमारा। जी जी
0: विश्व स्तर के।
1: जी, और उसके बाद जब शापर में कार्यरत रहा तो शापर के बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं लगभग 12 साल वहाँ पे कार्यरत रहा संगीत प्राध्यापक के रूप में, तो वहाँ से काफ़ी बच्चे निकले हैं। आज जितने भी हमारे बच्चे कॉलेज स्कूलों में जो संगीत के प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ आर्मी स्कूल में हैं योल में, और जितने भी ये धर्मशाला रहन और जितने आसपास के क्षेत्रों में हैं, तो बच्चे आज वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, वो बच्चे जो हैं आज वो संगीत प्राध्यापक और अध्यापक के रूप में वो सेवाएं दे रहे हैं। और ठाकुर साहब, मैं बताना चाहूँगा कि 2003 से लेकर मैं 15 तक रहा शापर में, तो हम उसके बाद खन्यारा भी मैंने 15 से लेकर 21 तक रहा, तो लगभग 8 वर्षों तक हमने जो था राज्य, जिला और राज्य स्तर पर हमारे बच्चों ने प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है। तभी मुझे पहचान मिली कि मुझे 2012 में सबसे पहला पुरस्कार जो मिला वो रोटरी क्लब शापर ने दिया, 2013 में धर्मशाला ने दिया, और 2014 में मुझे जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार जो है मिला है। उससे पहले जब मैं जन्म गीतों की बात कर रहा था तो 2011 से लेकर 13 तक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से मुझे सीनियर फेलोशिप मिली है। पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने संस्कार गीतों के ऊपर काम किया था, तो वो सीनियर फेलोशिप मिलने के बाद वो मैंने एक पुस्तक भी लिखी संस्कार गीतों के ऊपर, और फिर 2014 में जब राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला उसके बाद फिर निरंतर वो पुरस्कार मिलते गए।
0: जी, तो पुरस्कारों की श्रेणी में हमने भी देखा था कि आपको समाचार पत्रों में भी एक राष्ट्रपति से भी मिला था।
1: जी, वो 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये संगीत और शिक्षा में जो भी कार्य किए हैं उनके लिए ही मिला है, और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ठाकुर साहब, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपना जो ज्ञान है उसको एक ट्रांसफॉर्म करना, संप्रेषण करना बच्चों के माध्यम से, और बच्चे अच्छा मुकाम हासिल करें, तो मुझे लगता है यही एक अध्यापक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने संगीतांजलि कला केंद्र अपनी एक अकेडमी खोली है।
0: अच्छा।
1: और वो भी 2009 में उसकी स्थापना हुई थी। आज उस अकेडमी के 12 बच्चे जो है वो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से जो है वो CCRT स्कॉलरशिप, यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप और जूनियर फेलोशिप जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। अभी भी 3 बच्चे जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है, तो निरंतर वो प्रक्रिया चल रही है, कईयों को मिला है और कईयों को मिल भी रहा है।
0: जी, तो ऐसे में जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है, चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वो राष्ट्र स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उसमें जो कैसी अनुभूति होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई मिला आपको?
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुझे 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशियन एडमायरेबल अचीवर अवार्ड है, और ये 2023 में मिला था। हिमाचल के 2 लोग थे, एक शायद कोई सोलन से थे और एक मुझे मिला है, और उसमें एशिया के लगभग 350 के करीब जो थे वो पुरस्कृत लोग थे, वो अपनी अपनी श्रेणी में जिनको पुरस्कार मिला था, तो ये एक मेरे लिए एक उपलब्धि थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी मान सम्मान की बात आती है, जब सम्मान मिलता है तो जिम्मेवारियां भी और बढ़ जाती हैं, और इसलिए क्योंकि और अच्छे से अच्छा कर पाए।
0: जी, कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन।
1: जी जी जी जी, तो
0: जी, दूसरों को तो ये लगेगा कि नहीं जी पुरस्कार मिला है, खुश होंगे यहीं तक।
1: नहीं नहीं, पुरस्कार तो मिलते, जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं और दायित्व बढ़ जाते हैं और कार्यशैली में और अच्छा बदलाव लाना पड़ता है कि हम दूसरे की नजरों में कितने और अच्छे आ सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक वेस्ट इंडियन गोल्डन पर्सनैलिटी अवार्ड मिला था, राइजिंग मैन ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला है। उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनमें राष्ट्रीय लोक कला रत्न सम्मान मिला है, भारत ज्योति अवार्ड भी मिल चुका है, नेपाल गवर्नमेंट ने भी सम्मानित किया, इंडो नेपाल समरसता अवार्ड मिला है। उसके साथ फिर लोक संस्कृति के क्षेत्र में रोहित चंद्रशेखर लोक साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार कुल्लू वालों ने दिया। अभी हाल ही में श्री श्री अवार्ड इन एजुकेशन एक्सलेंस जो अभी बेंगलोर में मिला है, उसके साथ काफी पुरस्कार हैं। राज्य स्तर के लगभग 12 पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय स्तर के 6 हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार हैं।
0: जी, तो बहुत उपलब्धियां आपकी। हम तो आपसे मिलते भी रहते थे कभी न कभी, हमें लगता था कि एक आम से आदमी हमारे साथ काफी मिलते जुलते रहते थे, लेकिन आपकी खूबियों का भी पता चल रहा है कि क्या। इसके अलावा आप लेखन के क्षेत्र में किस तरह का कार्य करते हैं, जो ये प्रतिभाएं आपके पास, प्रतिभाओं का सम्मिश्रण है कहा जा सके तो बेहतर होगा, ये लेखन का कार्य जो आप किस प्रकार करते हैं, क्या कुछ लिखते हैं?
1: मैं ठाकुर साहब बताना चाहूंगा कि जब शोध कार्य किया था जन्म गीतों के ऊपर, तो 126 गीत एकत्रित हुए थे, क्योंकि शोध की दृष्टि से लगभग 18-20 या 25 गानों को ही हम उसमें सम्मिलित करते हैं, लेकिन इतने गाने बचे थे मेरे पास। मैंने कहा कि इनको एक पुस्तक का रूप क्यों ना दे दिया जाए। मैंने प्रोफेसर चंद्रशेखर डढ़वाल जी से निवेदन किया कि मैडम ऐसा करिए कि स्वरांकन मैं करता हूँ और संकलन मैं करता हूँ, और आप इनका भावार्थ बनाइए, इनका कथ्य विश्लेषण करिए, तो एक हमारी पुस्तक बन सकती है। बड़ी खुशी की बात है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज संस्था है दिल्ली की, जो प्राचीन चीजों को संजोकर रखने का कार्य करती है, और उसके कन्वीनर हैं हमारे एलएन अग्रवाल जी हैं। उनके जब संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें स्नेहा अनुदान देंगे हम अगर आप प्रकाशित करना चाहते हैं। तो हमने 2015 में 84 जन्म गीतों की पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें संकलन और स्वरांकन मेरा है और कथ्य विश्लेषण और भावार्थ प्रोफेसर चंद्रशेखर डढ़वाल जी का है। फिर ये लगा कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। मैं आदर के साथ, नाम डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी जी नहीं है, उनका नाम भी लेना चाहूंगा, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो जब लगभग संगीत और साहित्यिक संगोष्ठियां इकट्ठी होती थी, तो उनसे प्रेरणा कहीं ना कहीं मुझे मिलती रहती थी। तो जब लोकभाष स्वरांजलि का नाम जो रखा, तो आदरणीय पीयूष गुलेरी जी ने ही कहा कि ऐसा नाम जो है लोकभाष स्वरांजलि रखिए। और उस समय हमें ये नहीं पता था कि हम और किताबें लिख पाएंगे, लेकिन श्रृंखला ऐसी शुरू हुई कि फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर डढ़वाल, जिन्होंने विचार विमर्श और नारी केंद्रित गीतों पर बहुत सारा कार्य किया है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अभी छिंजोटी गीतों के ऊपर, जो क्योंकि आम जो हमारे लोक गायक गाते हैं, तो उन गानों का जो मूल या उनका मौलिक रूप जो है वो अक्षुण रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आकाशवाणी में अगर 4 लोग गा रहे हैं, तो उस गाने में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो भाख में आता है, चाहे शब्दों में आता है। मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो साहित्यकार थे वो दूरदर्शी थे, क्योंकि आज से 40-50 पहले कोई प्रालेखन का काम नहीं था, लेकिन जैसे कि MS रंधावा साहब हैं, डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे साहित्यकार हुए, उन्होंने गानों को लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद आज हमें ये लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी शायद इन गीतों को, क्योंकि भाषा और बोली से दूर होते जा रहे हैं, तो शायद इन गीतों को भी नहीं अपनाएंगे। हमें ये लगा कि जब शोध हम करते हैं, तो उसमें एक बात लिखी जाती है अंत में, कि अगर इन गीतों का संकलन किया जाए, इनका स्वरांकन किया जाए, इनका प्रकाशन किया जाए, तो आने वाली पीढ़ी को नए आयाम दे सकते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर जन्मजय सिंह गुलेरिया जी, आपने हमारे श्रोताओं को अपने विचारों संग जो है अपने जीवन के बारे में, अपने गायन के बारे में, लेखन के बारे में, आपने कौन कौन से कृत्य किए हैं, उस संबंध में जो है बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगोष्ठी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम तराने मन के।

0: और प्यार की ये
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था प्यार किए जा फिल्म से। इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। ये है तराने मन के कार्यक्रम की अगली पेशकश। महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कल्याण जी आनंद जी की बनाई तर्ज पर अख्तर रोमानी का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है हसीना मान जाएगी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने मन के। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं महेंद्र कपूर के गाए हमराज फिल्म के इस गीत के साथ। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत संगीतकार रवि का है।

0: महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए सुनिए अनजाना फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था अनजाना फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पराया धन फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

सैनिक भाइयों, पराया धन फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम बाल सभा के साथ।

सभी बच्चों को जय हिंद। सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की रेडियो दीदी हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे दोस्तों के साथ एक और प्यारी सी मुलाकात करने के लिए। तो आप सभी बच्चों को दीदी की प्यारी सी नमस्ते और दिल की गहराइयों से अभिनंदन आभार हमारे सभी तमाम श्रोताओं का जो एक बार फिर से हिस्सा बन गए हैं इस सुहाने से सफर का। नन्हे दोस्तों कहते हैं कि जब बड़ों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद सर पर बना रहे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक इसी तरह जब हमारे कार्यक्रम में हमारे बड़े श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम और हमारा ये कार्यक्रम अधूरा नहीं रहता है। तो सभी सुनने वालों को प्रवीण दीदी का बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ नन्हे दोस्तों, छमाछम बारिशें हो रही हैं, बरसात का मौसम है और बारिशों का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सभी से एक गुजारिश है कि बरसात के मौसम में आपने अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, कहीं भी आलसीपन नहीं दिख

खाना है कि भाई हर काम अम्मा ही करेगी, थोड़ा सा जिम्मेदार आपने खुद भी बनना है, थोड़ा सा ध्यान आपने खुद भी रखना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। नन्ही दोस्तों, बरसात का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि आपसे हम वही बातें दोहराएंगे। घर का बना सुपाच्य भोजन ही लेना है, और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कितनी भी ज़ोरदार भूख आपको लगी हो, थोड़ा सा मन मार लेना है, या फिर तो ये करना है कि जब भी आप घर से कहीं दूर जा रहे हैं तो घर का बना हुआ खाना साथ लेकर जाना है, और घर का पानी ही आपने पीना है। बाहर का पानी भी पीना थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, और अपना प्यारा सा छाता, अपना प्यारा सा रेनकोट हमेशा अपने साथ रखना है, और मौसम को देखते हुए ही आपने बाहर जाने की योजना बनानी है। तो बच्चों, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जानकारियाँ आप नन्हे बच्चों तक पहुँचानी हैं, और अगर आप आज की कक्षा में बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए हैं, यानी अपने दिमाग और अपने कानों की खिड़कियों को आपने खोल लिया है और बिल्कुल रेडी हैं कि आज आपकी रेडियो दीदी कौन से विषय पर आपके साथ जानकारी साझा करेगी, ये सुनने के लिए आप तैयार हैं, तो सुन लीजिए आज का विषय। बच्चे अपने पर्यावरण को कैसे रखें साफ स्वच्छ, अपना योगदान आप कैसे दे सकते हैं, ये जानेंगे आपसे, और कुछ टिप्स आपकी ये दीदी भी आपको सिखाएगी। तो जरूरी बातें आप तक पहुंचाने से पहले हम ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक तो बनता है ना, बनता है ना, क्योंकि भाई जब हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है तो हम सुनते हैं मस्ती भरे गीत। और नन्हे दोस्तों को जब तक कुछ अच्छे से सॉन्ग ना सुनाए जाएं तो कहते हैं दीदी कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, तो कमी को हमने बिल्कुल पूरा कर दिया है, पहुँचा दिया है आपकी रेडियो सेट्स पर डंकी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में समय है नन्हे मुन्ने बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। बात अब हम करेंगे, हमारे नन्हे बच्चे अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। नन्हे दोस्तों कहते हैं, बचपन की गीली मिट्टी में बोया गया बीज जीवन भर पेड़ बनकर फल देता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी एक बच्चे को बचपन से जो शिक्षा, संस्कार और अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, यही अच्छी बातें जीवन भर एक बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से साथ भी निभाती हैं। और बच्चों, बात जब पर्यावरण की आती है तो ये केवल किताबों में रटा जाने वाला विषय नहीं है, बल्कि एक संस्कार है जो एक बच्चे के मन मस्तिष्क में रोपा जाता है, ताकि बच्चे एक अच्छे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बन सकें। तो नन्हे दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश हमेशा हमारी भी रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, पानी व्यर्थ ना गवाओ। बहुत बार हमारे बच्चे ये स्लोगन सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और ये नारे भी लगाते होंगे कि पेड़ लगाओ, धरा को बचाओ, है ना। बहुत ज़ोरदार आवाज़ में आप ये नारे लगाते हैं, अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आपने वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि असल जीवन में हर रोज़ बिजली बचानी है, पानी को बचाना है, पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन भाई दीदी तो बहाना है, आपको दीदी की बातें जो सुननी होती हैं, है ना। कभी कभी पता है क्या होता है, हम बहुत ही आलसीपन दिखाते हैं, उदासीनता दिखाते हैं इन सारी चीज़ों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, काम को ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, है ना। जब ज़रूरत ना हो तो बिजली से चलने वाले सारे उपकरणों को आपने बंद कर देना है, घर के कर्टन्स और खिड़कियों को खोल कर रखना है, ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, सारे घर के पर्दों को बंद कर देते हैं, खिड़कियों को बंद कर देते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, यानी सिनेमा हॉल बना देते हैं अपने रूम को और दुब के पड़े रहते हैं अंदर। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे पता है क्या होता है, सफोकेशन आपको शुरू होती है। जब आप बाहर की ताज़ी हवा नहीं लेंगे तो जो अंदर की हवा होती है आप उसी को लेते हैं, वहीं आप बाहर निकालते हैं, तो इससे भी सांस संबंधी दिक्कतें जो होती हैं वो आपको हो सकती हैं। और हाँ, सूरज की रोशनी का आप तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक सूरज की रोशनी आपके घर दरवाज़े, आपकी खिड़कियों, आपके रूम तक नहीं पहुंचेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको

कभी भी नहीं मिल सकती है, आप नेगेटिविटी में ही रहेंगे। तो बच्चों, कोशिश करनी है कि जब आप अपने रूम में बैठे होते, अपने कमरे में बैठे होते हैं, तो कम से कम खिड़कियों और घर के जितने भी कर्टन्स होते हैं, आपके पर्दे होते हैं घर के, उनको खोल कर रखना है ताकि बाहर की रोशनी और ताज़ी हवा अंदर आ सके, ठीक है। और हाँ नन्ही दोस्तों, एक बात और बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप ब्रश कर रहे हैं ना, तो नल को खुला छोड़कर ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में हमने देखा है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, जी हाँ। लेकिन जब डांट पड़ती है ना सभी को, तो धीरे धीरे नल को बंद कर दिया जाता है, नल को खुला छोड़ देते हैं, ब्रश कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, पानी चला हुआ है, तो एक मग में पानी लेकर भी आप ब्रश कर सकते हैं, और ब्रश बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और जहाँ तक कि हम पेस्ट की बात करें, तो चने के जो दाना होता है ना, चने का दाना होता है, उतने ही आकार का आपने पेस्ट अपने ब्रश के ऊपर रखना है। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं, तो डॉक्टर उससे ज़्यादा लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो एक मग आपके लिए बहुत है। इसी तरह से जब आप नहा रहे हैं, तो शावर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, आप बाल्टी भर के रख सकते हैं अपने नहाने के लिए, क्योंकि एक बाल्टी बहुत होती है नहाने के लिए। तो नन्हे दोस्तों, थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा सा सभ्य बनिए, जो चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं उनका सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। और हाँ बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना है, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब आपकी ये दीदी फिर से एक बार यहाँ पर रुक रही है, अपनी बातों को थोड़ा सा विराम दे रही है, और हाँ पहुंचा रहे हैं आप तक एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, बात आज हो रही है अपने नन्हे दोस्तों के संग अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को किस तरह से साफ सुथरा रखना है। और हमारे ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे, जी हाँ, सिपाही कहें, कलाकार कहें, हमारे आने वाला भविष्य कहें, हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को, हमारे गाँव को, हमारे शहर को किस तरह से साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो नन्ही दोस्तों, कूड़ा हमेशा ही कूड़ेदान में डालना है। एक सभ्य व जिम्मेदार नागरिक आपने बनना है। कई बार पता है क्या होता है, हम बड़ी दूर से कूड़ा फेंकते हैं, है ना, क्योंकि कूड़ेदान के पास जाना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इससे पता है क्या होता है, जब हम कूड़ा फेंकते हैं तो आधा जो कूड़ा कचरा होता है वो डस्टबिन में, कूड़ेदान में गिरता है और आधे से ज़्यादा कूड़ेदान के बाहर गिरता है। तो हमें इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम हमेशा यही कहते हैं कि किसी भी विशेष अवसर पर एक पेड़ ज़रूर लगाना है। और बच्चों, आप ये बखूबी जानते हैं कि विशेष अवसर कोई भी हो सकता है, जन्मदिन हो सकता है, सालगिरह हो सकती है। आप जब अच्छे नंबरों से पास होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है। आप किसी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं खेल के लिए, आपको कोई बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है, वो भी एक बहुत अच्छा अवसर होता है। जब आपके दादा दादी रूठे होते हैं, आप उनको मनाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है। जब मम्मी और पापा के किसी कार्य के लिए आपको शाबाशी देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी यादों को आपने संजो कर रखना है और उन्हीं छोटी छोटी यादों के नाम पर एक पौधा आपने ज़रूर लगाना है। क्योंकि बच्चों, आप इस मुहिम में जब शामिल होंगे ना, तो ये मुहिम एक बहुत बड़ा मिशन बन सकता है। एक पेड़ जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बेशुमार मोहब्बत आप उनसे करते हैं, उनके नाम का एक पौधा ज़रूर लगाएं। पुरानी प्लास्टिक की बोतलों या फिर डिब्बों को यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय उनमें पौधे आपने ज़रूर लगाने हैं, या फिर सुंदर हस्तशिल्प यानी क्राफ्ट आप बनाकर रख सकते हैं और सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल के पौधे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों, ये छोटे छोटे और आसान कदम उठाकर अपने घर, स्कूल, आसपास के पर्यावरण को आप साफ स्वच्छ रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा जागरूक होने की, ज़रूरत है अपनी प्रकृति, अपनी धरा के साथ प्रेम करने की, मोहब्बत करने की। और बच्चों, जिस भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसके लिए हम कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, कभी उसके लिए हम हानि पहुंचाएं ऐसा भी ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है और जहां पर निस्वार्थ प्रेम होता है ना, वहां पर हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम आपने अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति के साथ रखना है। बच्चों, ये प्रकृति है, ये हमें सिर्फ देती है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहती है। जी हाँ, हमसे पता है क्या चाहती है, ये थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, देखभाल, सद्भावना, बस ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को चाहिए। इन्हीं सब में हमारी प्रकृति, हमारी ये धरा, हमारा ये पर्यावरण खुश रहता है। तो बच्चों, आपने जिम्मेदार बनना है, सभ्य नागरिक बनना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज रेडियो दीदी ने आपको ये जो छोटे छोटे उपाय बताए, ये जो प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ की, आप इन बातों पर, इन उपाय पर जरूर थोड़ा सा अमल करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में। जी हाँ, अंतिम पड़ाव है हमारे कार्यक्रम का, रोचक जानकारियों से भरपूर ये पड़ाव रहता है। तो आज के कार्यक्रम की जानकारी हम पहुँचा रहे हैं आप तक। जानकारी नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और बच्चों, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नन्ही दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक डाकघर सिक्किम हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हम आपको सिखाते हैं ना नन्ही दोस्तों, इन सारी बातों को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना होता है। नन्ही दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, पहुँचाते हैं आज के कार्यक्रम की जानकारी नंबर 4। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेक चंद जी ने बनाया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है। सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। बच्चों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। तो ये थी कुछ रोचक जानकारियां जो रेडियो दीदी ने पहुंचाई अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों तक। और अब हम पहुंचा रहे हैं आप तक आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: बोलो क्या, बोलो बोलो।
1: बुड्ढी
2: भुट्टा।
3: तो नैनी दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं आज का कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में हमें अपना तकनीकी सहयोग दिया विपिन कुमार ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह।

इसी के साथ नन्ही दोस्तों अब अपनी रेडियो दीदी प्रवीण को दी कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जाने से पहले आपसे वही प्यारा सा मीठा सा वादा चाहते हैं, हमेशा आपने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपनी हंसी से अपनी खुशी से अपने घर आंगन को हमेशा महकाते रहना है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, जय हिंद।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर

0: भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: On the occasion, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a two-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jayashankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Defence Minister Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. An interaction session with the MSMEs at the Garden Reach Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Defence Minister will witness the final of the Durand Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Supergiant at Yuva Bharti Krirangan later in the day. Tensions between Washington and Tehran have escalated further after U.S. President Donald

गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे

काल पुरुष तारा मंडल सप्तर्षि मंडल आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूँ, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अम्बिली अम्बावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ये ऐसा गाना है मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नज़र आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है, इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब हैं, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नज़र से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नज़र आता है तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नज़र आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नज़रिए से उसे देखते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज़ की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती और वो कागज़ के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त की इस दौर में भी कहाँ कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया के हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है। यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो बताइए किसकी आवाज़ में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं मेरे एक साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरा था, और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की वो कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियाँ, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियाँ सुनना, कोई बोल रहा वहाँ परियां रहती हैं तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्यौहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया, हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है, जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी, और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहाँ न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थीं, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी

खाना खिलाते समय सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी। वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा, सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग सुनते हैं। एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था, हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है, और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़र आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ये मानते हैं, ऐसा अंग्रेज़ी में इन्होंने लिखा जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा, निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई, आज माझा पाड़साला झोप का ग येत नाही। ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे और ऐसा ही हमारी एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है। लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज़ किसकी है और फिल्म

जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नज़दीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे हम। स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए काम था, इस फ़ोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज़्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ़ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का ज़माना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गज़ल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में हमें चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रही कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहाँ उसे चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना हो गई कब डूबेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी हैं। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या आपने

आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है। खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं। और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं, या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब, और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, ना कर तुम, तेरे कर तुम, ना कर तुम, हम तुम, नदाखात, किपाता, लताफात, पतापात, मेरा कस करामत,
1: ताते चिता, ताते चिता, थैया थैया थै, तकता तुम, तकता तुम, तकता न्या,
0: सपने में देखा सपना
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियाँ मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून।

कलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है। और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज़ में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को ज़रूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहनें चांद को अपना भाई मानती हैं, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं। बहनें चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियाँ हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियाँ, लाखों परियाँ रहती थीं, कई आकृतियाँ दिखाई देती थीं, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुँच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम, और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज़ किसकी है, फिल्म का नाम क्या है, और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या? गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है, वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है, और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियाँ भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकल कर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने कि चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला।

एक ही ना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी और हमें ये भी बताई कि क्या आपने कभी सफ़र किया है चांद के साथ। जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं तो कई बार हमारी नज़र चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफ़र कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहेगा।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर आचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज़ थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर

वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना। लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके

0: भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वी एन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
5: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में एक एक की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दीं।

0: ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां। फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।
4: तुम

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: से दिल से।
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। शिमला में आज राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 स्थानों पर 122 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशन परिवहन निगम के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि भविष्य में जहां भी जरूरत होगी वहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में शामिल 297 इलेक्ट्रिक बसें लंबे और छोटे रूटों पर सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और ये लक्ष्य हासिल करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा विधायक दल ने वंदे मातरम के मुद्दे पर आज शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान का प्रतीक रहा है। ऐसे में इसे विधानसभा में सम्मानपूर्वक गाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया।
1: हमने कहा है कि हम आगे बढ़कर के भी बात करेंगे। हम उसमें लीगल कोर्स भी एग्जामिन कर रहे हैं। हमने गलत किया क्या है? विधानसभा में जो राष्ट्रीय गान के संदर्भ में जो झूठा प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उसकी हमने वीडियो मांगी है। वीडियो दे पा रही, क्योंकि वीडियो में ऐसा है ही नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रीय गान के सम्मान में सभी सदस्यों ने खड़े होकर के राष्ट्रीय गान किया है, और जब वीडियो नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे।
0: जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों से बचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी और चुनावी गारंटियों सहित अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष खुद सदन से बाहर जा रहा है।
1: नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की जो गारंटी दी थी, 5 लाख नौकरियां 5 साल में और 1 लाख नौकरियां 1 साल में, 4 साल होने जा रहे थे हैं अभी, तो 4 साल में 4 लाख नौकरी होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के हम विधानसभा के अंदर पूछना चाह रहे। प्रश्नकाल के लिए हमने पिछले कल शुरुआत की, हमने कहा पूरा सहयोग देंगे, लेकिन पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री जो है वो सदन से वॉकआउट करके चले जा रहे हैं। और हमें साफ लग रहा है मुख्यमंत्री की मंशा से कि वो सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना चाहते हैं।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल 24 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से संवाद करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला स्थित केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माय भारत केंद्र कांगड़ा के उपनिदेशक ध्रुव डोगरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं और खिलाड़ियों को फिटनेस सहित विकसित भारत के लक्ष्य का संदेश दिया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज सुबह कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। इस वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा भारी वर्षा से बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन के दौरान बारिश व भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 224 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा चल व अचल संपत्ति को करीब 1121 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। चंबा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 25 अगस्त तक मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि यह निर्णय यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के चलते लिया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय हैं सेमीकंडक्टर और एआई क्रांति। वाचक स्वर राकेश शर्मा।
0: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है जो स्मार्टफोन और गाड़ियों से लेकर सैटेलाइट और एआई सिस्टम तक हर चीज को चलाते हैं। एआई अब एडवांस्ड चिप्स, खास प्रोसेसर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मांग को बढ़ा रहा है, जिससे ये दोनों तकनीकें एक दूसरे से गहराई से जुड़ गई हैं। इसी जुड़ाव को समझते हुए भारत चिप डिजाइन और विनिर्माण से लेकर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वदेशी एआई मॉडल तक अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। सरकार द्वारा की जा रही पहलें दोनों क्षेत्रों में एक ऐसी एकीकृत तकनीक व्यवस्था बन रही है जो आत्मनिर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और नवाचार को बढ़ावा देती है। ये जुड़ाव आधुनिक विनिर्माण, शोध, उद्यमिता और उच्च मूल्य वाले रोजगार के नए अवसर भी खोल रहा है। जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ये क्षमताएं वैश्विक तकनीक नेतृत्व और विकसित भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। भारत सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताएं विकसित कर रहा है। इसमें चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उन्नत पैकेजिंग, उपकरण और सामग्री तक सब कुछ शामिल है। आज घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके भारत भविष्य की तकनीकों को आकार देने की स्थिति में आ रहा है। सेमिकॉन 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नींव रखी। ये पूरी मूल्य श्रृंखला को मदद करता है, जिसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, उपकरण सामग्री और कुशल प्रतिभाएं शामिल हैं। सेमिकॉन इंडिया 2.0 छह रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। हैरू चिप डिजाइन, मशीनें और सामग्री, फैब्स, शोध और विकास और प्रतिभा, ये एकीकृत दृष्टिकोण आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाता है, घरेलू मूल्यवर्धन को विस्तारित करता है और भारत को भविष्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाता है। 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं में सिलिकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फैब्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन और उन्नत पैकेजिंग सुविधाएं शामिल हैं। 3 सुविधाओं में पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है, जो सेमीकंडक्टर नीति से विनिर्माण की ओर भारत के बदलाव का संकेत है। भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने चिप्स टू स्टार्टअप जैसी पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। इसके तहत 320 शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 68,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उन्नत चिप डिजाइन क्षमताओं तक पहुंच बढ़ी है। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा 105 स्टार्टअप्स को ईडीए टूल्स के लिए सहायता प्रदान की गई है। अप्रैल 2026 तक 75 संस्थानों द्वारा 2211 चिप डिजाइनों का टेप आउट किया गया, जो घरेलू चिप डिजाइन क्षमताओं के विस्तार को दर्शाता है। 7 चिप्स का सफलतापूर्वक निर्माण विभिन्न नोड्स पर दिया गया है। इसमें 12 नैनोमीटर जैसे उन्नत नोड्स भी शामिल है। अमेरिका, जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड और जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ वैश्विक साझेदारी से तकनीकी सहयोग और व्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में 48 देशों और क्षेत्रों से 350 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी शामिल हुए, जिससे वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की भागीदारी मजबूत हुई है। ये साझेदारी भारतीय कंपनियों को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला से जोड़ने और घरेलू क्षमताओं को तेजी से बढ़ने में मदद कर रही है। मिशन का उद्देश्य ऐसी क्षमताओं का निर्माण करना है जो सुरक्षित, समावेशी और भारतीय आवश्यकताओं पर आधारित हों। इसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नवाचार, आर्थिक विकास और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक रणनीतिक क्षमता बनाना है। जुलाई 2026 तक एआई कोष में 14,000 से अधिक डेटाबेस सेट और 331 एआई मॉडल मौजूद हैं, जो शोधकर्ताओं, डेवलपर्स और अन्वेषकों को एआई समाधान बनाने और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराते हैं। 11 राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन और नवाचार चैलेंज विचारों से लेकर लागू किए जा सकने वाले समाधानों तक की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णाराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल, अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: कुछ कहता है।
1: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है कि चंबल की कसम फिल्म से। और इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अर्पा पैरी, पार्वती, राधा, शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े, सुभाष दिगंबर, राजेश गड़े, शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्ज़ा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक भीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: हरमानी।
1: पर के मानी, अरे चीटक तो हमारी सहन के सामने ही रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने। कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना, बी ओ वाई बॉय।
2: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
3: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का, लड़का।
2: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट न जाए हाथ से।
3: को छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। बी ओ वाई टॉय, टॉय के माने लड़का, टी ओ वाई बॉय, बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
4: टी ओ वाई बॉय।
0: टी ओ वाई बॉय होता है क्या?
4: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
4: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
4: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
4: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
4: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
4: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
4: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
4: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
4: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
4: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
4: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
4: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
4: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टी ओ वाई टॉय,
4: बी ओ वाई टॉय,
0: नहीं, बी ओ वाई।

0: देख रहा था।
1: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
1: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क जो देख रही थी, आता कैसे?
1: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
1: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
1: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर

0: कुछ पढ़ लेती हैं।
1: मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता।
0: सीखोगे साइकिल चलाना?
2: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
0: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
2: वो क्या होता है?
0: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
2: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
3: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
0: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
2: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
2: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
0: हाँ, मेरे भी।
2: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
0: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
2: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
0: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो। चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
2: अच्छा
0: हाँ, अब बैठो सीट पर। ओफो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
2: अच्छा, ले लिया।
0: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
2: अच्छा अच्छा, छोड़ू?
0: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो, ऐसे
2: ऐसे।
0: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
2: नहीं तो
3: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
2: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
2: अच्छा
0: देखो, मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
2: हाँ। अब कहो ना गो।
0: गो।
2: गिरा।
0: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना।
2: कहाँ हटाए?
0: लगी तो नहीं?
2: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
2: अच्छा।
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
2: हाँ, तुमने किससे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
2: नहीं?
0: और नहीं तो क्या?
1: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
2: पापा ने।
0: नहीं
2: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
2: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
2: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
2: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
2: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर
2: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
2: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: ताकि चूहे ना ले जाए। तुम चूहे।
2: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
0: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, काय की तोड़ा मेरा
0: बीओ
2: नहीं, बीओ वाई
0: बीओ वाई बीओ वाई।

0: पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं, शाबाश आगे चलो आगे चलो, और आगे से मैडम डांटती है, पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
1: क्यों, उसे क्या हुआ?
0: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। हाँ। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
1: फिर
0: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा, शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय? फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
1: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
0: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते।

0: यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: उफ़ो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। BOY टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
2: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
2: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
2: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
2: डरपोक डरपोक,
0: खुद शर्मीली नहीं
2: नहीं तुम तो...

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती हैं। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती हैं, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूंगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूंगी।
1: क्यों
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती।

0: मैं तुम्हें दूसरी ओर फेंक दिया करूंगा ऐसे।
1: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चुआ ले जाएगा।
0: आज बाग में खेलेंगे। हमारे बाग में वहाँ कोई नहीं है ना।
2: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
0: नहीं तो मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
1: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
0: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
1: तो चलो फिर।
0: चलो
1: चलो।
0: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
1: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
0: अगर ये सचमुच की कार ही होती
1: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
0: जब मैं देता तभी ना हम खुद इसमें घूमने जाते।
1: हाँ, कार मैं चलाती।
0: अरे लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
1: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
0: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
1: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
0: चल पौधों को सींचेंगे।
1: वो क्या होता है?
0: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
1: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
0: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
1: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
0: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो आओ।
1: चलो आओ। अरे देखो तो पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
0: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
0: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
1: कहाँ?
0: यहाँ तो आओ।
1: अरे ये तो वही बुलबुल है।
0: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे अलग मकान में।
1: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
0: अब क्या करें इसका?
1: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
0: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कहीं की?
1: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी। झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मूठी उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था। फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
2: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
0: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
2: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
0: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
2: तुम कहाँ जा रहे हो?
0: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
2: रुमाल?
0: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
2: डैडी मारेंगे?
0: वो कुछ नहीं कहेंगे।
2: झूठ
0: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
2: क्यों?
0: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
2: अच्छा लपेटो फिर।
0: ना तुम लपेटो।
2: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
0: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
2: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
0: लो।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
0: मुझे भी।

0: पहले ही आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित इससे छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना

0: किया?
1: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
0: आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
1: क्यों?
0: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना,
1: उससे क्या होता है?
0: मामा जी की शादी है।
1: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
0: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
1: क्यों?
0: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
1: फिर?
0: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया, मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
1: मुझे भी नहीं।
0: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं, मैं नहीं डरती वरती पापा से।
2: झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे।
0: तुम डैडी से डरते हो?
1: मैं क्यों डरूंगा?
3: झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
0: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे।
0: बाय। नहीं।

0: मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ।
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: मैं तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करती है ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, भी उनकी।

0: टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
1: जाओगी तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना, ये तुम रखो।
0: कुछ कहेंगे तो नहीं?
1: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, कूद खेलना, ऐसे ऐसे ऐसे।

0: दो फूल जूही के, अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साई के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: उजाले उनकी यादों के।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक, रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को

0: रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह।
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां के शुरुआती दिन कैसे थे?
2: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
2: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी।
2: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूँ और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
2: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है?
1: वाह,
2: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी, ये सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के
1: जी,
2: लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
2: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे? तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन

0: जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहाँ पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है, सारे उनका स्वागत आगत। तो वहाँ रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके
0: और उनका नाम था अनामिका अक्सर।
1: ओ हो घोड़े को जलेबी खिलाना जिन्होंने आगे चल के फिल्म
0: मेरी क्लासमेट जो पीएन अक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहाँ से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग?
0: नहीं नहीं वो नहीं बता उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है।
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है।
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
2: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
2: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
2: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
2: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
2: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी।
2: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए है, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे है। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की, क्या कहते हैं, एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
2: जी,
1: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
2: वाह
1: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड के ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे ही पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आई तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे,

0: प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का। हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10। हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहाँ पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर अच्छा। ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो, तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं,
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर देख के च-

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है। अभी सीनियर बैच में देखिए, आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक बांटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जांबे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, एक प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
0: जी।
1: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
0: जी,
1: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही, कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था,

0: ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूं। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझवारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा,
1: जी
0: या गजब तिची अदा मराठी में,
1: जी
0: या
1: जी
0: मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात
0: तो
1: है।
0: यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख
1: ये बात।
0: कि मैं जाऊंगा बीड जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है।
0: उसी में जयदत्त सिरसागर कॉलेज के, वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे, तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए,
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा
1: ये
0: नहीं है,
1: एक्स्ट्रा थे।
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातना घर हिंदी में की,
1: बहुत इंटेंस नाटक।
0: बहुत इंटेंस नाटक है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग,
1: ओके, ये वो
0: ये
1: पॉइंट।
0: अनुभव होता है ना आपको, और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है, तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है, और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है, और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्थ नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्थ के, वो बर्नीनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक्थ को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल्ड ब्रेक्थ, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच,
1: क्या बात
0: हमने
1: है?
0: करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह,
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह, उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स, मिरेक्युलसली एक्टर इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट

0: वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली ले लिया, आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा चेंज की।
0: मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस,
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने दो चॉइस थे।
0: एक तो
1: जैसे
0: आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना
1: नहीं,
0: है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते
1: अलग,
0: खुले।
1: दोनों भी, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है? आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की? बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले, इज अ
0: जी
1: प्ले राइट एंड
0: बिल्कुल
1: नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की
1: सोचने के। हाँ,
0: चमक
1: एक
0: दमक
1: एक
0: दिख
1: तरफ
0: रही है।
1: इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भला ही होगा किसी का, या एक या दो डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव

0: है, जहां पर अनंग देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
1: बाप रे,
0: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर, क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
1: गजब।
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में। तो ये एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो, उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव।
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है,
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती,
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहाँ होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर
1: जी
0: उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: बत्तीस
1: रे।
0: बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है। और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां,
1: वाह,
0: जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं, वो भगवान को देखने आए हैं,
1: आस्था है।
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है,
1: जी
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी।
0: अंदर, कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि
1: जी
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये चार राज्यों ने, मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन।

0: एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलॉसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलॉसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है, वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार, व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी
5: के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
6: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
5: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक

0: उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कलकत्ता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वे महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़ें और संसद में इसका समर्थन करें। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में सहयोग करके इसे साबित करना चाहिए। श्रीमती ईरानी ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र से हटा दिया है। अधिकरण मानना है कि यह बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 291 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिकल ने 117, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged them to remain consistent in their efforts to build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as a preferred destination to build their careers and future in the space sector. During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pawan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended the greetings on the occasion of the National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस

कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना आपने सुनी फिल्म कर्ण अर्जुन से। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अभी आपने सुना रंगरेज फिल्म से सुखविंदर सिंह व साथियों की आवाज़ों में गाया ये शिव भजन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन आप सुना करते हैं वीकली पल्स, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल अपडेट्स।

कार्यक्रम युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, हमारे युवा भाई बहनों को आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और हमारा कार्यक्रम जो है उसको सुनने के लिए तैयार होंगे। जी हाँ युवा साथियों, हम तो आपके लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं जानकारियों के साथ, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी वैसे ही तैयार रहें, क्योंकि जो भी हम कार्यक्रम में आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम ये आपसे आशा करते हैं, यानी कि अपने युवा साथियों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उतनी ही शिद्दत से इस कार्यक्रम को सुनें। जी हाँ युवा साथियों, बातें, जानकारियाँ, गीत संगीत तो हम इस आधे घंटे में आपके साथ करते ही रहेंगे, बातें भी, और आपको गीत संगीत भी सुनवाएंगे। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो भी जानकारियाँ हम कार्यक्रमों के माध्यम से देते हैं उन्हें भी आप पूरे गौर के साथ सुना कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपका मूड फ्रेश करते हैं, लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में लेकर वीकली पल्स।

युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और चलते हैं जानकारियों की तरफ। तो आज के दिन रहता है वीकली पल्स और उसमें हम थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स के बारे में। तो चलिए, भारत आज अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बहुत ही गर्व के साथ मना रहा है। पिछले वर्ष यानी 23 अगस्त सन 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचा था, जब इसके लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस बड़ी और ऐतिहासिक सफलता की याद में ही सरकार द्वारा हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी, पोस्ट कर कहा, आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें।

युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं वीकली पल्स की, और वीकली पल्स में इस समय हम दे रहे हैं आपको नेशनल अपडेट्स। जैसा कि आज अंतरिक्ष दिवस है, तो इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर कहा, चंद्रयान मिशन की ऐतिहासिक सफलता से लेकर गगनयान मिशन की महत्वाकांक्षी योजना तक अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय यात्रा राष्ट्र की वैज्ञानिक उत्कृष्टता, तकनीकी क्षमता और नवाचार के अटूट जज्बे को दर्शाती है। युवा साथियों, ओडिशा के पारादीप तट से करीब 240 समुद्री मील दूर बंगाल की खाड़ी में शनिवार को एमवी ओशियन विनर नाम का एक मालवाहक जहाज डूब गया। पनामा के झंडे वाले इस जहाज पर 24 क्रू सदस्य सवार थे, दो को बचा लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। पीटीआई के मुताबिक क्रू में 20 चीन के, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश से है। जहाज ओडिशा से लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। ये शुक्रवार को ओडिशा तट से रवाना हुआ था। जहाज के डूबने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, लेते रहिए जानकारियां और साथ साथ संगीत भी हम आपको सुनवाएंगे।

0: युवा मंच कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और आज मैं हूं आपके साथ वर्षा टोच। बात हो रही है वीकली पल्स की। तो चलिए आगे जानते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए जिस कारण आज से अमेरिका ने 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के इस टैरिफ लगाने के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर उतना ही टैरिफ लगाने की कसम खाई है। पीएम कार्नी ने कहा कि हाल के हफ्तों में हमने अमेरिका के साथ कनाडा की स्थिति को दुनिया के सबसे बेहतर डील बनाने की दिशा में तेजी दिखाई थी, लेकिन ये कनाडा के लोगों के अनुसार लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। कार्नी ने आगे कहा कि कनाडा भी अमेरिका के नए टैरिफ का डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाब देगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी TOT ने टेलीकॉम कंपनियों को नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत कंपनियों को अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फोटो बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए उन सब्सक्राइबर्स की पहचान करनी होगी और उनके कनेक्शन ब्लॉक करने होंगे जिनके नाम पर तय सीमा से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। देश में कोई भी व्यक्ति सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और सर्विस एरिया को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है।
1: लेफ्ट राइट परेड थम। जवान पीछे से गाना गाएगा, गाना गा

युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आपका स्वागत है। इस समय आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। बात हो रही है वीकली पल्स की, जिसमें आप लेते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स। तो हम बात कर रहे थे सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये सीमा 6 कनेक्शन तक सीमित है। नई गाइडलाइंस के तहत 23 अगस्त से DOT उन सब्सक्राइबर्स की फ़ोटो DIP के जरिए शेयर करना शुरू करेगा जिन्होंने तय कनेक्शन लिमिट पूरी कर ली है। भारतीय एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ये तस्वीरें रोज़ाना डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। आगे हम बात करेंगे मौसम के बारे में, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

युवा साथियों, मौसम की अगर हम बात करें तो धर्मशाला में हाल ही में लगभग 68 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है और यहाँ 28 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना है। और त्रिउंड में अगर ट्रैकिंग नियमों की बात करें तो त्रिउंड जाने वाले पर्यटकों और ट्रैकर्स के लिए कैरी बैग, वेस्ट यानी कूड़ा वापस लाने का नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहना चाहेंगे कि भारी बरसात हो रही है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं अगले कार्यक्रम में, फिर से मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगी, आज मैं रही आपके साथ वर्षा कटोच, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में सहयोग दिया विकास पठानिया ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी दोस्त वर्षा कटोच को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वारीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामी गजल।

शाम 6:30 मिनट पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिश्रा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0189224391। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इसमें जानकारियों के साथ साथ आपको लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8 बजे हम प्रसारित करेंगे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस देश का नाम सुना करते हैं। रात्रि 8:30 पर रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निदेशक असित सेन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

रात्रि 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल। शाम 6:00 व 7:45 पर प्रादेशिक समाचार व रात्रि 8:15 पर हिमबीट्स कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। और अब एक नज़र आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार, संध्या 9:00 न्यूज़ एट 9 और रात्रि 10:00 से लेकर रात्रि 11:00 तक रवि व स्तरीय संगीत सभा, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी हाँ आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: नमस्कार ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है।
8: भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
7: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल व पर्यटन उद्योग से हिमाचल के नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। वाराणसी में आज होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सड़क बिजली पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र के पर्यटन स्थल भी अब अधिक सुगम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है और कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के स्थापना वर्ष समारोह में उन्होंने कहा कि AI ऑटोमेशन डेटा और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास से व्यवसाय और रोजगार के रूप में व्यापक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बदलते परिवेश में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपनी डिग्री को शिक्षा की अंतिम मंजिल न मानते हुए इसे जीवन भर सीखने की यात्रा की शुरुआत के रूप में देखने का आह्वान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित मांगों के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में आज भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पेंशनरों का 15% महंगाई भत्ता और वर्ष 2016 के वित्तीय लाभ लंबित है। अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी दी हुई चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है।
9: 1,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है। कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही, उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1,500 रुपए प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी वो 50,000 नौकरी तक नहीं दे पाए। किसानों से किया गया वादा और दूध उत्पादकों से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे उसका क्या हुआ?
7: प्रदेश में मानसून की सक्रियता से आज सुबह कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। इस वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा भारी वर्षा से बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन के दौरान बारिश व भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 224 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा सरकारी व निजी संपत्ति को करीब 1,121 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। आकांक्षी जिला चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए NHPC चमेरा 2 पावर स्टेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्यसभा सांसद व ऊर्जा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य हर्ष महाजन ने बताया कि इस पहल से जिला में गरीब, जरूरतमंद और दुर्गम इलाकों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृत राशि में से 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक लेपोस्कोपी मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। अदालत में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह व आपसी सहमति से निपटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हमीरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिला की सभी अदालतों में ये अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
10: हेलो
11: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
10: फिर से
11: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
12: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
10: सर इतने कहाँ से?
12: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
11: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
13: क्या हुआ अबू?
10: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
11: अरे
10: काट दिया।
13: कोई डर खौफ ना करें अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
10: फ्रॉड?
13: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
10: तो पैसे गवाओगे,
14: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
15: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुनी तलत अजीज की आवाज में गाई ये गजल। कार्यक्रम श्यामी गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह के युगल स्वरों में।

0: अभी आपने सुने भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह की आवाजों में गाई ये गजल। कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामी गजल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपको डायल करना होगा 01892224391। ये है हमारे स्टूडियोज का नंबर।

काले म्हीने च क्या क्या तुहां करदे, कियां कियां करदे, कन्नै नौइयां नवेलियां जिहड़ियां बरसाला रहना जांदियां इस म्हीने, ताती दा क्या महत्व ऐ, कन्नै इन्हां सारियां मतलब मिलियां जुलियां हां गप्पां चुथनियां न, पर गप्पां हां इ'यां कोई बेकार दियां नहीं चुथदे, अहां जिहड़ियां गप्पां चुथदे तिस च अहां तुहानू जानकारी भी दिंदे, तुहाडे ते जानकारी लैंदे भी हन, कन्नै जिहड़े साढ़े न्याणे स्याणे सुना दे होंदे तिन्हां दी भी चलो मनोरंजन कन्नै कन्नै तिन्हां दी भी जानकारी च जिहड़ा हुंदा सै इजाफा हुंदा। ठीक है जी, तां हुण अहां लेके हाजिर होई हन पूरा कार्यक्रम यानी कि मिंजरां, तां साढ़ी बोबो भैन इक जुड़ा दी, पर अहां गल्लबात करा दे हे तां बेचारी थकी गई फोन करी करी के, कोई गल नहीं तुहां दोबारा जुड़ा, तैलू तक अहां सुननी भेंट, पर इक गल मैं फिरी गलाना चाहंगी कि फोन करना तां तुहां सिग्नल च रेही के गल करनी, कन्नै रेडियो बखें खड़ोई के नहीं गल करनी, कहें कि टाइम साढ़े वल बड़ा घट हुंदा, तां अहां ए चाहंदे पे घट ते घट टाइम जिहड़ा ऐ सै वेस्ट होवे, ताकि ज़्यादा ते ज़्यादा साढ़ियां जिहड़ियां बोबो भैणां न सै इस कार्यक्रम च जुड़ी पान, इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सै हिस्सा बनी पान। ठीक है जी, तां अहां शुरुआत जिहड़ी करनी सै करनी अहां भजन कन्नै, तां आओ सुनदे ए भजन।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: अपना नाम दसा, कने ग्राएं दा भी नाम दसा।
1: मैडम जी, नीनू बोला दी नंगरोटे ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। फटाफट नाम दसा, अपना कने ग्राएं दा नाम भी दसा।
1: नाम मेरा सुभाषना देवी, पत्नी स्वर्ण सिंह, ग्रो मैटी।
0: अच्छा
1: लगा पता?
0: जी, बिल्कुल लगी है पता, तुहां करोए ते जुड़ी।

0: ये कने ये चढ़िए बखें पौंदा ग्रां हूं तू मिजो ये दसा भी काले महीने पर क्या गलाना चाहेंगे।
1: काला महीना हूं नौइया लाड़िया का होंगे चलिया जानिया भाई कने आसम पचान पे लगी रहने पितर दीजे दूजे देना।
0: अच्छा जी
1: पूजा पाठ कर दे नेज नूज रख दे कर दे
0: इस महीने रख दे।
1: हाँ जी
0: ता सिर्फ संझा दा ही खाना रख दे कि तीनों टाइम दा रख दे
1: गाय फुलका रखना कने दोपहर दा बात रखना।
0: अच्छा जी फिर मनसी के दे इंदे भेजियां
1: तो थों बरसा कटोच बोला दे था इंदा मैं बोली।
0: अच्छा जी बड़ी अच्छी गल है पर मिंजो ये दसा भी कई बोलते भी कंजकाएं भी खुआई सकते ऐसा रोटी या ता तो अड़े ऐसा कुछ रिवाज है।
1: नहीं कंजकाएं ता नहीं खुआंदे सब पूजिए दा ता जियां कोई जन्मदिन होवा ती भी खुआइंदे माता पूजन ते जे खुआइंदे।
0: अच्छा जी ए मतलब गाईयो देनी हुंदी है ना। अच्छा जी
1: मैं सै गाना सुनना मैं
0: आज गाने वाला कार्यक्रम नहीं है आज है गल्ला बातें करने वाला कार्यक्रम।
1: अच्छा गल बात करने में जैसा गाना बड़ा बढ़िया लगदा माए मेरी है बीरे मिली पौना रस्ते।
0: कोई गल नहीं तुम्हारी फरमाइश हाँ जा लू लोग गीतां दा मंगलवारियो कार्यक्रम हुंदा ना तिस च जरूर हाँ। पूरी करगे ना के दसिया तू अपना
1: वासना देवी कने पत्नी स्वर्ण सिंह मैटी।
0: ठीक है जी तुहां कार्यक्रम मिंजरां च जुड़े इस तईं तुहाडा दिले ते मता मता धन्यवाद। इहीं सुणदे रहा आकाशवाणी धर्मशाला कने जुड़ने वास्ते एक बार फिर इस ते धन्यवाद
1: आवाज पछाणी लंदी है भाई
0: धन्यवाद जी
1: दे बोला रे जिकड़े वाली।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। जरा जोरे ने गलांगे तू? हाँ,
1: जी।
0: जोरे ने गला ना, दसा अपना, कने चटपटी दसने। हूं मिनटा रही हैं चार।
1: नाम सोनिका
0: सोनिका,
1: जी।
0: कुथू ते गला दे? ग्राएं दा नाम भी दसा।
1: खोल जाते
0: खोली ते कुण दे खोली?
1: खुली खोल
0: अच्छा जी, ता कार्यक्रम च अज तुहां विषय सुने, आज अहां काले महीने पर गलबात करा दे। क्या गलाना चाहेंगे इस पर? हाँ जी,
1: हेलो।
0: हेलो। इं लगा था तुहां आफदे आफदे ही आए हैं, कने गल तुहाड़ी क्लियर नहीं होआ दी संजू ना। काले महीने पर क्या गलाना चाहेंगे?
1: क्या गलाना?
0: दिया बत्ती कर दे कुछ संजा।
1: हाँ जी कर दे।
0: और क्या क्या कर दे काले महीने च?
1: काले महीने पत्त पूरे पूज दे।
0: पत्त पूज दे? कुसियो पूज दे? ता कुसियो दिन दे तिस पत्ते? फिरी
1: पत्त गायो दिन दे।
0: कयो पूज दे पत्ता है कुछ पता?
1: पितरा पुत्रा जी दे दे।
0: अच्छा जी, ता इस महीने च जियां शुभ काम कोई नहीं हुंदा, जियां ब्याह ब्यू ए कोई भी काम नहीं हुंदा है ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कने फिर जियां सैरी दी सगरांद आउणी, ता फिर चहल पहल होई जानी फिरी, है ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: क्या नाम दस्या तुहां अपना?
1: सोनिका।
0: ठीक है जी, तुहां कार्यक्रम च जुड़े तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। ता हुण बोबो भैणो, टाइम जेड़ा असें बड़ा घट रही आ, अहां तुहाड़े कन्ने एह गुजारिश करनी भी कार्यक्रम च ना जियां इक तुआर छड़ी के अगले तुआरे फोन करा करा, क्योंकि बहुत सारियां बोबो भैणां इस बेला इस कार्यक्रम च जुड़ने की कोशिश करा दियां होंदियां। कने जिहड़ियां बोबो भैणां जुड़ी जांदियां तिन्हां दा मता मता धन्यवाद। कने जिहड़ियां नहीं जुड़ी पांदियां तिन्हां अहां इह गलाना चाहांगे कि कोशिश करदे रहा, कने कोशिश करने वालियां दी कदी हार नहीं हुंदी, है ना। कल ही ना कल ही तां तुहाड़ा फोन भी लगी जाणा, कने जैलू तुहां शिद्दत कन्नै करना तां असें जरूर तुहाड़ा फोन लगना। कने हुण जिहड़ा कार्यक्रम मिंजरां दा टाइम है घटा दा, पर इ'यां है भी अज अहां गल्लबात करा दे काले महीने पर। कने काला महीना जेह्ड़ा ऐसा है पूरे साले च, इसदा आना भी जेह्ड़ा ऐसा है बड़ा जरूरी है। हैलो,
2: हेलो
0: तौले तौले नां दसा जी अपना, कने ग्राएं दा नां भी दस्सने। अच्छा जी, कने तुहाड़ा नां क्या है?
2: नां मेरा संतोष कुमारी जी।
0: संतोष कुमारी, क्या काम कर लाया इस वक्त तुहां?
2: किछ नहीं मैडम जी, मैं बैठी ही लागी अज पाणा।
0: पत्रोड़े पवा दे वेई हैं?
2: हां जी हां जी।
0: क्या बात है, घरे च है कोई बिट्टी कुड़ी ब्याहियो जिन्ना बरसाला गईयो है जेड़ी है आईयो है?
2: ये बिट्टी नहीं है, पोतरी है। कई कब्र साला थी है, सोरियां दे घर है, साड़ा तो चुके पंदा।
0: अच्छा, इबका बरसाला तिथु है। इया कितनिया रौनक होंगे ना जालू बिट्टी कुड़ी कोई भी बरसाले भेजनी हो, है ना।
2: मजा आई जाता फिर कोनू माउणा ता मिजे ती जाना होगा ता मी बड़ा मजा आंदा,
0: है ना। 15 दिन तक घरे दे से रोटियां जेड़ियां बनांदे आ छाबड़ुआ च पाने तीया ते दी खुशबू नहीं जांदी घरे ते।
2: हांजी हांजी।
0: फिर टकी टकी के रखने से मिठे संचोलू बनाने, फिर पूरे अड़ोस पड़ोस ग्राएं दियां जनानियां भी मदद करना आंदियां, है ना। बनाई के देने, है ना। तो इं चलिया साड़ा ये प्रोसेस ना, कने बड़ा अच्छा लगता साड़े जेड़े रीति रिवाज है ना जी, बड़े समृद्ध हैं। तो अहां तो इस कार्यक्रम के माध्यम से तुहाड़े सारियां कन्ने ये गुजारिश करनी कि इन रीति रिवाजां संजोई के रखा, बनाई के रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जेड़ियां से इन चीज़ा अगे लेके बदन, है ना जी। बिल्कुल, तसे अहां समझांगे तां कार्यक्रम च फोन करने ते मता मता धन्यवाद, क्योंकि टाइम हुई है ना जी जुड़ने वास्ते, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ता चलदे चलदे अहां तुहानू दसी दईए भी इस अच्छे दे कने बड़े शैल कार्यक्रम जो तुहाडे घरां तक पहुँचाने च तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानिया ने, कने इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह, कने हुण अपनी बड़की बोबो वर्षा टोजो आग्या दिया, कने अगले कार्यक्रम च मैं तुहाडे ने फ्री ते मिलगी। अच्छा जी, नमस्कार। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
4: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
3: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
5: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग

की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान, बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

सभी किसान, बागवान व पशुपालक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हुए हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी लेकर और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा टोच। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बातें भी करेंगे, जानकारियाँ भी देंगे और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करवाएंगे। जानकारी आज हम दो तरह की आपके साथ साझा करेंगे, उसमें एक है धान फसल की देखभाल और एक है बागवानी विभाग द्वारा योजनाएं। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इन्हीं दो विषयों के ऊपर आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन जानकारी साझा करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो हैं वो लोग झंकार सुनकर अपना मूड जो है उसको फ्रेश करें और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे जानकारियों की तरफ। पर साथ ही साथ आज हम भंडारण की भी बात करेंगे, क्योंकि धान फसल के साथ आजकल मक्की की खेती भी जो है वो पकने के कगार पर है और कहीं कहीं तो पक भी चुकी है। जहां बारिशें थोड़ी कम होती हैं वहां पे तो किसान भाइयों खेती जो है वो पक भी गई है मक्की की। तो आज हम इन सभी चीज़ों पर मिली जुली जानकारियाँ जो हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले आपका मूड फ्रेश करते हैं इस लोक गीत के साथ।

0: जी किसान भाइयों, ये था लोकगीत कौशल्या देवी की आवाज़ में और हम आशा करते हैं कि आप सभी किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों को ये लोकगीत पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं जानकारियों की तरफ। सबसे पहले हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं धान फसल की देखभाल के बारे में।
1: जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि इस समय पर उनकी जानकारी के लिए

0: अनेक कार्यक्रम करते रहते हैं, कृषि से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, जो कि आज हम धान फसल की देखभाल जो है किस प्रकार की जाए इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग पालमपुर में कार्यरत सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर एन के धीमान। इनसे बात करेंगे कि धान फसल की देखभाल जो है कैसे की जाए। तो धीमान साहब, आपका स्वागत है।
1: हाँ, नमस्कार।
0: तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि धान फसल की रोपाई के उपरांत की देखभाल जो है कैसे करनी होती है, अगर SRI विधि से लगाई है या जो है रिवायती तरीके से लगाई है, तो तरीकाकार क्या होना चाहिए उसकी देखभाल का?
1: ऐसा तो हमारे समस्त किसान भाई जो कि धान की फसल से जुड़े हैं, धान की खेती करते हैं, उनको मालूम है कि ये जो हमारी धान की खेती है ये पानी वाली खेती है, जिसको हम बोल पाए कि ये जहाँ पानी की मात्रा काफ़ी है वहीं पे ये धान की जो फसल है वो उगाई जाती है। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि हमारा जो सारा के सारा क्षेत्र जो है वो पानी कुलों के थ्रू जो है वो पानी की मात्रा वहाँ उपलब्ध हो। ये जो हमारा वर्षा के ऊपर आधारित भी हमारी जो धान की फसल जो है वो उगाई जाती है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे भारतवर्ष में जो है मानसून जो आ चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ कि जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ तो जिला कांगड़ा के अंदर जो है वो धान की, चाहे वो रोपाई के माध्यम से करनी है या जो डायरेक्ट सोइंग जो की है, सीड सोइंग की है,
0: सीधे तौर पर
1: जो बिजाई की गई थी, वो जो है वो लगभग जो हमारी बिजाई जो है या रोपाई जो है वो हो चुकी है। अब प्रश्न आता है कि इस रोपाई के बाद किसान जो है वो क्या क्या काम जो है करेगा ताकि उसको जो है वो अंत में अच्छी उसकी जो पैदावार मिले। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारा मुख्य कि हमें कितनी कौन कौन सी इसमें जो है वो खादें जो दी जाएंगी, इसका जो बीट कंट्रोल है वो कब किया जाएगा, उसका जो पौध संरक्षण है वो कब किया जाएगा।
0: जी, तो पहले जो बात करते हैं अपनी खादों की जो है, इसमें जो कौन कौन से पोषक तत्व जो है आवश्यक होते हैं उनको डाला जाए ताकि जो है फसल की बढ़वार जो है अच्छी हो। जी
1: हाँ, धान में जो है वो मुख्यतः हमारे जो है वो तीन ही तत्व जो है वो आवश्यक तत्व हैं, जिसमें से हमारा नाइट्रोजन,
0: जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जिसको जो ज्यादातर
1: जो वो उसकी मात्रा ज्यादा डालनी होती है, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास। ये जो तीन जो है वो मुख्य हमारे जो है वो तत्व है, जिसकी जो है वो गुणवत्ता जो पैदावार लेने के लिए और जो फसल की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए इन तीनों का जो है वो डाला जाना जो है वो अति आवश्यक है।
0: जी, तो इस वक्त जो है यूरिया अगर की बात की जाए या सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात की जाए या म्यूरेट ऑफ पोटाश की, तो मात्रा क्या होनी चाहिए?
1: हाँ, देखिए इसमें जो मैं प्रति कनाल अगर बात करूं तो जो यूरिया है वो 4 किलो प्रति कनाल के हिसाब से जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, और जो हमारी फॉस्फोरस के लिए हमारे जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो 6 किलो प्रति कनाल के हिसाब से, और जो पोटास है उसके लिए जो म्यूरेट ऑफ पोटास एक खाद आती है उसको 2.5 से 3 किलो प्रति कनाल के हिसाब से जो है वो डाला जाना चाहिए।
0: जी, तो इसका तरीकाकार क्या है? हाँ, जो खादों को डालने का खेत में,
1: इसका जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो हमारा जो फॉस्फोरस और पोटास की जो मात्रा है ये पूरी मात्रा, और जो नाइट्रोजन की जो मैंने बताया जो आधी मात्रा जो है, जिसको जो है जब हम लोग अब मच करेंगे, हमारे किसान जो है जो मच करेंगे बारिश पड़ने के बाद, उस मच के तुरंत बाद जो है वो उसमें जो है वो उसको डालना।
0: जी,
1: और जो हमारी बाकी आधी मात्रा है नाइट्रोजन की जो है वो रोपाई के 3 हफ्ते के बाद जो है वो जो हमारी नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा जो है वो 3 हफ्ते के बाद जो है वो उसमें डालनी।
0: जी, तो दीमान साहब, ये जो यूरिया की बची हुई मात्रा जो है कैसे, छट्टा विधि से देनी होती है? अक्सर तो ये कहते हैं कि जो है जमीन के नीचे डालनी चाहिए जो है।
1: नहीं, जमीन जी के नीचे डालने वाली नहीं है ये, क्योंकि यूरिया जो है ये एकदम घुलनशील जो हमारी खाद है, जैसे भी इसको डालते हैं इसमें नाइट्रोजन होती है और ये तुरंत जो है ये पानी में जब जाएगी तो ये घुल जाती है। जो जमीन के अंदर डालने वाली है वो मैंने आपको बताया जो फास्फोरस और पोटास, ये दोनों जो है ये बिजाई के साथ जब हम बीज डालते हैं तो उसी समय
0: रुपाई करते हैं
1: तो उसके अंदर वो अपने आप अंदर चली जाती है।
0: जी, तो उस दौरान जो है जब हमने यूरिया दे दिया उसके दौरान जो है खेत की मेड़ें बंद करनी चाहिए और पानी जो है
1: वो खड़ा होना चाहिए। ये ऐसी फसल है जिसमें लगभग 60 से 65 दिन 70 दिन तक जो है वो पानी जो है इस फसल में खड़ा रहना चाहिए।
0: जी, तो एक तत्व होता है जिंक, तो जिंक की कमी जो है कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये जिंक तत्व जो है कितने सालों में जो है फसल को देना होता है धान की फसल में?
1: आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हमारे जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो जिला कांगड़ा में जो है वो देखा गया है कि जिंक जो है वो हर साल जो है वो डालना चाहिए। जिंक की मात्रा जो है वो 25 जो हमारा 25 किलो प्रति हेक्टर 1 किलो प्रति कनाल के हिसाब से जो है वो किसान को जो है बिना जांचे ही डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी,

0: डिपार्टमेंट की तरफ से जब यहाँ पे जमीन का सर्वे हुआ था, उसकी जो एनालिसिस हुए थे, उसका विश्लेषण हुआ था, तो इसमें पाया गया है कि जिला कांगड़ा की जो समस्त जहाँ पे हमारी धान की खेती होती है वहाँ पर इस तत्व की कमी जो है वो हमेशा जो है वो कम पाई गई है।
1: जी,
0: तो जब
1: पहले दौर
0: कभी
1: में तो ये
0: भी
1: होता था कि 3 सालों बाद जो है या अक्सर
0: नहीं,
1: जो है
0: अब हम
1: जिंक
0: लोग इसकी
1: की मांग
0: सिफारिश
1: की
0: करते
1: जाती
0: हैं,
1: थी।
0: सिफारिश करते हैं कि हर साल जो है फसल में जो है इसको, जब भी किसान को लगे कि उसकी फसल का जो पत्ता है थोड़ा सा भूरापन उसमें अगर आ रहा है तो उसको जो है वो समझ लें कि इसमें जिंक की कमी
1: कमी
0: है,
1: है
0: वो है।
1: जी, तो इसके लिए जिंक जो है कैसे इसको छिड़काव करके करते हैं या जो है इसको पानी में
0: इसमें
1: इसका
0: पानी,
1: करते
0: इसको
1: हैं जी।
0: पानी में भी डाल सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो रेत में मिला करके भी डाल सकते हैं, दोनों विधि से जो है इसका छिड़काव भी किया जा सकता
1: जी,
0: है।
1: तो छिड़काव की परिस्थिति में जो अगर छिड़काव करना है तो उसमें जो है क्या मात्रा रहती है, पानी की क्या मात्रा रहती है और जो है कितना
0: मैंने
1: तत्वों के
0: बताया
1: साथ।
0: कि ये जो है ये सबसे ज्यादा पानी खपत वाली फसल है, तो मैं तो चाहूंगा कि जब भी किसान कोई ऐसा ऑपरेशन करे तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक जो है वो पानी जो है
1: खेत में
0: वो
1: खड़ा
0: खेत
1: रहना
0: में
1: चाहिए
0: खड़ा रहना चाहिए।
1: जी, तो उसी दौरान जो है इसका जो
0: हाँ,
1: है छिड़काव या ये जो है इसमें
0: इसका जो
1: मिलाना
0: है
1: चाहिए
0: इस्तेमाल करना
1: जी।
0: चाहिए।
1: तो इसके अलावा जो है कुछ खरपतवार भी, वैसे तो पानी में जो है बहुत कम खरपतवार उगते हैं लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि जो धान की तरह ही लगते हैं और इसमें उग जाते हैं, तो उस परिस्थिति में इनको जो है कैसे जो है इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है जी।
0: देखें, जो खरपतवार के नियंत्रण की जहाँ तक बात है, इसमें दो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो कृषि विभाग के जो हमारे सेल सेंटर्स है वहाँ भी उपलब्ध है, जो जितने भी कृषि विभाग द्वारा जो जितने हमारे जो डिपो होल्डर्स को जो हमने लाइसेंस दे के रखे हैं उनके पास भी वो जो है वो उपलब्ध है। इसमें दो हमारे, एक बूटाक्लोर और एक मचेटी के नाम से जो है वो खरपतवार जो है वो मार्केट में या विभाग के पास उपलब्ध होते हैं। जो बूटाक्लोर है वो 50 मिली लीटर जो है वो एक पंप में, 16 लीटर का जो एक पंप होता है उसमें मिला करके जो है वो एक कनाल में जो है वो इसका छिड़काव करें। जब लगे कि धान के खेत में 2 या 3 पत्तियां जो हैं वो दिखें तो ये मान लेना चाहिए कि वो जो है वो खरपतवार है और उसका तुरंत जो है का नियंत्रण जो है वो बूटाक्लोर के माध्यम से या जो मचेटी है उसके माध्यम से जो है उसका किया जाना लाजमी है।
1: जी, तो इसमें जो बूटाक्लोर और मचेटी जो है मात्रा क्या रहेगी, कैसे जो है
0: हाँ,
1: इसका इस्तेमाल
0: जैसे
1: करना है।
0: मैंने बताया कि जो बूटाक्लोर है वो 50 मिलीलीटर जो है वो एक पंप के अंदर, मतलब 3 ml जो है वो 1 लीटर पानी में जो है मिला करके इसका जो है वो बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका आप छिड़काव करें, या जो मचेटी है वो 3 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है वो उसका छिड़काव करें। आवश्यक है जब हम मचेटी का इस्तेमाल करें तो जो फसल है वो 4-5 दिन के बाद करें और उसमें जो पानी खड़ा होना जो है 4 से 5 सेंटीमीटर मैंने बताया पानी जो है वो खड़ा होना जो है उसमें बहुत ही आवश्यक है,
1: जी
0: तभी जा करके जो मचेटी है उसका पूरा असर बीड नियंत्रण के लिए जो है वो दिखे
1: यानी ये खरपतवार जो है उससे नियंत्रित हो जाते
0: हो
1: हैं
0: जाते
1: जी।
0: हैं।
1: धीमान साहब, ये जो समय है बरसात का, इसमें जो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत होता है,
0: जी
1: तो वो कौन कौन से कीड़े और बीमारियां हैं जिनका प्रकोप जो है धान फसल पर हो सकता है जी।
0: किसान भाइयों के लिए सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा जो कीट है, कौन सी बीमारी जो है वो उस फसल को नुकसान कर रही है, क्योंकि अलग अलग कीट के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए जो है वो अलग अलग किस्म की दवाइयां होती हैं। इसके लिए तो मैं तो किसान भाइयों को पहले तो अपना एक अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले उसका जो है वो एक सैंपल लेकर के, जो हमारा मलाम है एक कृषि, जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक जो है वो रिसर्च राइस रिसर्च स्टेशन है वहां पर ले जाएं, या कृषि विभाग के जो नजदीकी कार्यालय है वहां पर जो अधिकारी को दिखाने के बाद ही जो है वो उसका जो है वो इस्तेमाल करें।
1: जी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये तो कांगड़ा के जो हमारे किसान भाई उनके लिए है, इसके अलावा ऊना में जो है कृषि विज्ञान केंद्र
0: केंद्र
1: ऊना
0: है
1: है, वहाँ जा सकते हैं या कृषि विभाग में जा सकते हैं, या जो है जो हमारे चंबा जिला के जो किसान भाई हैं वो अपने साथ के कृषि विकास अधिकारी या खंड स्तर के अधिकारी के पास जो है राबता कायम कर सकते हैं और उनसे परामर्श अपना
0: परामर्श करने के
1: जी
0: उपरांत ही जो है वो दवाई का इस्तेमाल करें।
1: जी तो कीड़े और बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी कीड़े और
0: हाँ,
1: बीमारियां।
0: इसमें ज्यादातर के जो हमारा आजकल जैसे अभी हमारी क्योंकि रोपाई जो हो चुकी है तो रोपाई के तुरंत बाद जो है वो एक राइस हिस्पा के नाम पर एक कीट है, जो एक पत्ते चूसने वाला जो है कीट है जिसको टिड्डी भी कहते हैं, टिड्डे कहते हैं, या एक राइस बग के नाम पर है, या और किस्म के जो हमारे जो अन्य कीट हैं वो इस सीजन में जो है इनका जो है अटैक
1: प्रकोप होता
0: हो
1: है
0: सकता है, हो
1: जी,
0: सकता है।
1: तो जो है अगर प्रकोप हो जाता है कीड़ों का टिड्डों का, तो उस परिस्थिति में कोई दवाई है जिसका इस्तेमाल करके इनको नियंत्रित किया जा
0: हाँ,
1: सकता है।
0: अगर किसान भाई को लगता है कि ये

0: जो है वो राइस हिस्पा है या वो जो जो पत्ते चूसने वाला कोई टिड्डा है, तो इसमें जो है वो क्लोरोपायरीफॉस नाम की एक दवाई आती है। क्लोरोपायरीफॉस जो है वो 3 से 3 ml, 2.5 से 3 ml जो है वो प्रति लीटर पानी में मिलाकर जो है, या उसका जो है 2 लीटर दवाई जो है वो 25 किलो रेत में डालें और प्रति हेक्टर जो है इसका जो है वो छिड़काव करें। आवश्यक है कि जब हम रेत में इसको मिलाएं तो पूर्णतः जो दवाई और रेत है वो अच्छी तरह मिल जाए।
1: यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेत और दवाई का सम्मिश्रण जो ऐसे बनना चाहिए कि रेत के हर भाग में
0: जो है वो दवाई मिल जाए। लगे, अन्यथा क्या होगा कि जो कहीं पर वो रोग जो है वो ठीक हो जाएगा और जहां पर वो दवाई की मात्रा जो है वो नहीं गिरी होगी वहां पर जो है उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा।
1: जी, तो अक्सर देखा जाता है कि जो पत्ते जो है धान फसल में जो है पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं।
0: जी,
1: पीले पड़ने के पीछे जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं?
0: इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा जो जो जड़ से जो एक तने से जो एक बीमारी लगती है जो उसका कारण भी हो सकता है। कोई पोषक तत्व की कमी की वजह से भी वो हो सकता है, तो ऐसे तो बता पाना असंभव है। तो इसलिए मैंने अभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब हमें ये पता ना लगे कि क्या कारण है, तो इसके कारण की जांच के लिए जो है आवश्यक है उसका के 2 पौधे निकाल करके जो है वो नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में या जो हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जितने भी KVKs हैं या राइस रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पर ले जाने के उपरांत ही या जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी जो परामर्श है उसके बिना कोई भी दवाई का छिड़काव ना करें।
1: जी, यानी कि कहने का मतलब ये हो कि जिंक की अगर कमी है तो फिर जिंक सल्फेट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो है और कोई बीमारी है तो उस या कीड़ा है तो उस परिस्थिति में जो है एक विशेषज्ञ बता पाएगा कि
0: बिना परामर्श से कोई भी दवाई का छिड़काव ना करें।
1: तो इस परिस्थिति में जो है अगर हमारा जो है किसान भाई जो है उन्नत किस्में लगाई है उसने धान की और उन्नत विधि से खेती बाड़ी की है, तो उस परिस्थिति में जो धान फसल है अगर बासमती कहा जाए या दूसरे चावल कहा जाए तो कितनी कितनी पैदावार मिल सकती है, या फिर जो है संकर किस्म है जो हाइब्रिड जिसको कहा जाता है कितनी पैदावार मिल सकती है प्रति कनाल या प्रति हेक्टेयर?
0: देखें, आजकल तो मैं चाहूंगा जो हमारे पुराने तरीके में जो हमारे पुराने जो किसान थे जो पुरानी हमारी जो किस्में थी धान की वो तो शायद लुप्त हो गई है, लेकिन आज का जो किसान है वो हमारा ज्यादा का जो संकर बीज है जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं उसके ऊपर ही उसका जोर है। तो हाइब्रिड जो है अलग अलग कंपनीज के हाइब्रिड है। अगर हम औसतन बात करें यील्ड की पैदावार की अगर हम बात करें तो 50 और 55 अन्यथा 60 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से भी इसकी जो हमारी यील्ड है वो मापी गई है अलग अलग कंपनीज के हाइब्रिड्स की।
1: जी, तो अन्य जो उन्नत किस्में हैं जो प्रदेश सरकार की हैं या केंद्र सरकार द्वारा जो है दी गई हैं किस्में विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं उसमें जो है कितनी पैदावार?
0: उसमें तो 30 और 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से जो थी वो अभी तक हमारे पास पैदावार जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो हमारी जो शंकर किस्में हैं
1: उनमें
0: पैदावार जो है वो बहुत ज्यादा है और किसान उसका जो है वो अभी क्योंकि वो शंकर जो बीज हैं उन्हीं का इस्तेमाल जो है किसान कर रहा है।
1: जी, NK धीमान जी, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि धान फसल की देखभाल कैसे की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम किसान वाणी में इस समय हमारे किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों ने सुनी ये जानकारी जो कि थी धान फसल की देखभाल पर। जी हाँ किसान भाइयों, शुरू से लेके अंत तक धानों के साथ हमें क्या क्या करना होता है तो ये सब कुछ इस जानकारी में बताया गया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक लोक झंकार जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं।

सीताराम व साथियों की आवाज़ों में अभी हमारे किसान बागवान व पशुपालक भाइयों ने सुना ये लोकगीत, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये झंकार जो है लोक झंकार पसंद आई होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं मिलीजुली, पहले हमने धान की फसल के बारे में बातचीत की और अब हम मक्की भंडारण पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि धान फसल तो है ही है, पर कुछ हमारे किसान भाई जो हैं उन्होंने मक्की की फसल जो है वो भी लगाई हुई है, तो अब कई जगह तो मक्की जो है वो पक चुकी है, तो ऐसे में उसका भंडारण जो है वो बड़ा सोच समझ कर हमें करना होगा। इसके

भंडारण के लिए पहले तो हमें सुरक्षित जगह यानी कि घर में जो भी सुरक्षित जगह है या कमरा है या जहाँ भी सूखी जगह है वहाँ इसका भंडारण करना चाहिए, क्योंकि अगर जगह सूखी नहीं होगी तो जो मक्की हम उसका वो जो होता है छिलका होता है मक्की का, उसको उतार कर जब हम रखते हैं और उसके दाने भी कई जगह जो है वो उनको उतार कर रखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए जगह का सूखा होना जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि भंडारण जो है सूखी जगह होगा तभी हमारी फसल जो है वो लंबे समय तक रहेगी, नहीं तो ऐसे फंगस आने के पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो होते हैं। बातचीत किसान भाइयों जारी रहेगी, पर थोड़ी सी बात हम आज मौसम पे भी कर लेते हैं। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण श्री मणि महेश कैलाश यात्रा को 23 और 24 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हरसर से श्री मणि महेश कैलाश की ओर जाने वाले मार्ग पर यात्रा न करने के निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्ल और कुर्ली भी बैठे हुए हैं, तो अब तो उठने के कगार पर हैं, पर कहते हैं कि कुर्ल और कुर्ली जब उठ जाते हैं तो बरसात भी लगभग समाप्त हो जाती है, तो अभी एक दिन और बचा है, तो ऐसे में भारी बारिश हो रही है तो प्रशासन ने जो हिदायतें दी होती हैं तो हमें उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, हमें पूरा नियमों का जैसे भी हमें बताए गए होते हैं उनका पालन करना होता है ताकि हम सभी सुरक्षित रहें और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो किसान भाइयों, हम फिर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

किसान भाइयों, इस प्यारी सी लोक भेंट के साथ हमारा आज का खेती बाड़ी कार्यक्रम जो है वो अब संपन्न होता है। जाने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: किए जाएंगे।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
4: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
3: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
4: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।
5: हाँ!

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन उद्योग से प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश में 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 स्थानों पर स्थापित होंगे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के कांग्रेस के आरोपों को नकारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल व पर्यटन उद्योग से हिमाचल के नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। वाराणसी में आज होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र के पर्यटन स्थल भी अब अधिक सुगम हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है और कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3,11,00,000 पर्यटक हिमाचल पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष जुलाई माह तक करीब 1,06,00,000 पर्यटक प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल 24 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं से संवाद करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला स्थित केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माय भारत केंद्र कांगड़ा के उपनिदेशक ध्रुव डोगरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं और खिलाड़ियों को फिटनेस सहित विकसित भारत के लक्ष्य का संदेश दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। शिमला में आज राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 स्थानों पर 122 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशन परिवहन निगम के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं।

0: धोत्रे ने बताया कि भविष्य में जहां भी जरूरत होगी वहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम के बड़े बेड़े में शामिल 297 इलेक्ट्रिक बसें लंबे व छोटे रूटों पर सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के स्थापना वर्ष समारोह में उन्होंने कहा कि एआई, ऑटोमेशन, डेटा और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास से व्यवसाय और रोजगार के स्वरूप में व्यापक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बदलते परिवेश में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपनी डिग्री को शिक्षा की अंतिम मंजिल ना मानते हुए इसे जीवन भर सीखने की यात्रा की शुरुआत के रूप में देखने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू को हिमालयी क्षेत्र की विकास संबंधी चुनौतियों और संभावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आकांक्षी जिला चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए एनएचपीसी चमेरा 2 पावर स्टेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्यसभा सांसद व ऊर्जा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य हर्ष महाजन ने बताया कि इस पहल से जिला में गरीब, जरूरतमंद और दुर्गम इलाकों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृत राशि में से 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपी मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। भाजपा विधायक दल ने वंदे मातरम के मुद्दे पर आज शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान का प्रतीक रहा है। ऐसे में इसे विधानसभा में सम्मानपूर्वक गाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया।
1: हमने कहा है कि हम आगे बढ़कर की भी बात करेंगे। हम उसमें लीगल कोर्स भी एग्जामिन कर रहे हैं। हमने गलत किया क्या है? विधानसभा में जो राष्ट्रीय गान के संदर्भ में जो झूठा प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उसकी हमने वीडियो मांगी है। वीडियो दे पा रही, क्योंकि वीडियो में ऐसा है ही नहीं। कोई अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रीय गान के सम्मान में सभी सदस्यों ने खड़े होकर के राष्ट्रीय गान किया है, और जब वीडियो नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे।
0: जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों से बचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी और चुनावी गारंटियों सहित अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष खुद सदन से बाहर जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित मांगों के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में आज भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पेंशनरों का 15% महंगाई भत्ता और वर्ष 2016 के वित्तीय लाभ लंबित हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी दी हुई चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है।
2: 1,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले हिमाचल प्रदेश दबा है। कोई ठोस निर्णय हिमाचल की सरकार नहीं कर पा रही। उल्टा हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं 1500 रुपए प्रति महीना जो वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने, वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही। 5 लाख युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी, वो 50,000 नौकरी तक नहीं दे पाए। किसानों से किया गया वादा और दूध उत्पादकों से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का, उसका क्या हुआ? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, उसका क्या हुआ?
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। इस वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं और विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 125 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा भारी वर्षा से बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। राज्य में 30 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन के दौरान बारिश व भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 230 लोगों की मृत्यु हुई है। चंबा जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 25 अगस्त तक मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि ये निर्णय यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के चलते संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। आधिकारिक तौर

0: पर मणिमहेश यात्रा 4 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। लाहौल स्पीति में राज्य स्तरीय पोरी मेले के अंतिम दिन त्रिलोकीनाथ मंदिर से आज मणिमहेश यात्रियों को विदाई दी गई। हर वर्ष जिला से श्रद्धालु दुर्गम स्थानों से पैदल सफर तय कर मणिमहेश झील तक पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: लाहौल स्पीति में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था से जुड़ी ये यात्रा डड़ी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष श्रद्धालु राशल और कोगती दर्रे के दुर्गम रास्तों से करीब 5 दिन पैदल सफर कर मणिमहेश झील पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधाष्टमी के दिन सूर्य की पहली किरण जब झील पर पड़ती है तो झील का जल अमृत समान हो जाता है। श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान को पुण्यदायी मानते हैं। त्रिलोकीनाथ से दी गई ये विदाई लाहौल स्पीति की धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह व आपसी सहमति से निपटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। हमीरपुर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिला की सभी अदालतों में ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत केस का निपटारा करने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन उद्योग से प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश में 122 करोड़ रुपए की लागत से 80 स्थानों पर स्थापित होंगे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भाजपा पर लगाए गए राष्ट्रगान के अपमान के कांग्रेस के आरोपों को नकारा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पद को भरने हेतु इच्छुक स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पंचायत वार्ड का नाम मगर पाधरू, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम मगर, वृत्त का नाम बग्गी। पात्रता निम्न प्रकार से होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। प्रार्थी की आयु अधिसूचना जारी होने की तारीख को 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में हो। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे परिवारों की सूची में दर्ज हो। प्रार्थी के परिवार की सालाना आय 50,000 रुपये से अधिक ना हो व इस संबंध में आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु प्रार्थी का 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं यदि वह आवश्यक नियम व शर्तें पूर्ण करती हों। आवेदन पत्र में जिस पद हेतु आवेदन किया है वह आंगनबाड़ी केंद्र का नाम स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए। जिस आंगनबाड़ी केंद्र हेतु आवेदन किया है उस आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण में परिवार दर्ज होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी किया गया हो। आयु प्रमाण पत्र। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित निम्नलिखित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की सत्यापित छया प्रतियों सहित 8 नवंबर 2026 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी दूरभाष संख्या 01905225540 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी श्रोताओं ने सुनी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में गाई ये गजल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में गाया ये गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बबू मान की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब हिमबीट्स कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिम बीट्स लेकर हाजिर हूं मैं उपमा ठाकुर। अगस्त का महीना हमारे मन में देश प्रेम की भावना को और अधिक जागृत करता है। देश के महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमने दास्तां की बेड़ियों से मुक्ति पाई थी। बलिदानों की शौर्य गाथाओं को ये देश सदैव याद रखेगा। साथियों, जानकारी की बात हिमबीट्स के साथ में आज हम जानेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ये अमर कृति स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बाद में उन्होंने इसे अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। वंदे मातरम गीत भारत के स्वाधीनता संग्राम का एक प्रतीक बन गया था और इसने लोगों और मातृभूमि के बीच भावनात्मक जुड़ाव को समाहित किया। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत गाया था। 1905 में वंदे मातरम गीत की अपील बहुत शक्तिशाली हो गई थी और इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में इस गीत को पूरे भारत के जन जागरण के रूप में अपनाया गया। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने भारत के बाहर पहली बार स्टटगार्ट्स बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था और इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। स्वतंत्रता के उपरांत संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने पर पूर्ण सहमति प्रदान की थी और वंदे मातरम को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। साथियों, हिमबीट्स में अब हम बात करेंगे सामाजिक सरोकारों की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सामाजिक सरोकार के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं में वंचित वर्गों के समावेशन को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य में संवेदनशील वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण और दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। प्रदेश सरकार की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्वप्रथम निराश्रित बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की। निराश्रित बच्चों की मदद के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। इस योजना के तहत प्रदेश के 6000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। योजना के तहत राज्य सरकार न केवल इन बच्चों की शिक्षा का पूर्ण खर्च वहन कर रही है, बल्कि इन बच्चों को हर महीने 4000 रुपए का जेब खर्च भी प्रदान कर रही है। बाल बालिका संस्थानों के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के खाते में हर माह 1000 रुपए और 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के खाते में हर माह 2500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। सरकार निराश्रितों में स्वावलंबन की भावना भी बढ़ा रही है। निराश्रित युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू कर स्वावलंबी बनाने के लिए

0: 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त घर बनाने के लिए भूमि और 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी रखा गया है।
1: मेरा नाम गौरव, विलेज गोला, पोस्ट ऑफिस कनेक्ट, तहसील सुंदरगढ़, डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। मुझे सुखाश्रय योजना के तहत घर बनाने के लिए 3 लाख और शादी का शगुन भी 2 लाख का मिला था। इससे मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।
2: मेरा नाम जयंतिका है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का कांगड़ा रजौल गांव की स्थायी निवासी हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। जिन बच्चों के मम्मा पापा नहीं है तो हमें बहुत खुशी है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है सुख आश्रय योजना जो वो लेकर आए।
3: मेरा नाम शुभम है, मैं बिलासपुर से रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता जी की मृत्यु बचपन में हो चुकी थी, तो उसके बाद हम दादा दादी जी के साथ ही रहे, तो दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद हम बेरोजगार थे और हमारे पास कोई इनकम सोर्स था नहीं। तो इसके अंतर्गत हमें एक सहायता मिली है जो सुख आश्रय योजना के अंतर्गत आती है। उसमें हमें 4,000 रुपये महीना और 2 लाख रुपये की सहायता मिली है, जिससे मैंने अपना सैलून ओपनिंग की है और इससे अच्छी इनकम सोर्स मुझे हो रही है। इसके लिए मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाता है, जिसका संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करती है। इन बच्चों को करियर काउंसलिंग और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सुविधा भी दी जा रही है। साथियों, राज्य सरकार कांगड़ा जिला के लुथान में 92,38,00,000 रुपए की लागत से मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर का निर्माण कर रही है, जिसमें आश्रितों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विकास की मुख्य धारा से वर्षों तक हाशिए पर रहे वर्गों का उत्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य भर में लगभग 8,42,000 से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में लगभग 1 लाख नए पेंशन मामलों की स्वीकृति सामाजिक सुरक्षा के दायरे में निरंतर विस्तार को दर्शाती है। वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना तथा डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
4: मेरा बेटा शिवम सिंह है और उसको सुख शिक्षा का हर महीने 1,000 रुपए आते हैं। मेरे हस्बैंड की 2024 में नवंबर में डेथ हो गई थी, उसके बाद मैंने फॉर्म भरा था तो उसका मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि हर महीने 1,000 रुपए आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी का हुआ बहुत बहुत धन्यवाद इस योजना में हमारा नाम डालने।
5: मेरा नाम साक्षी कौशल है, मैं गांव तरेटी तहसील नदौन जिला हमीरपुर की निवासी हूं। मैं अभी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी हमीरपुर से कर रही हूं। हमें शुरू से मतलब कॉलेज की फीस देने में काफ़ी दिक्कतें रहती थी, बट मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ने हमें काफ़ी लाभ दिया है, जिसके तहत हमारी कॉलेज और हॉस्टल की फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंड अभी तक 1.5 लाख का भुगतान हो चुका है और इसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ये स्कीम चलाई एंड हमारी स्मूथ पढ़ाई के लिए हमारी हेल्प की।
0: वंचित वर्गों की बेटियों के विवाह के लिए विवाह अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी एक व्यापक और समावेशी सहायता प्रणाली विकसित की गई है। मुख्यमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। काला पानी कहे जाने वाले डोडरा कवार, कुपवी के टिक्कर गांव और जिला कुल्लू के सरची गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम किया। बड़ा बंगाल के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर उनकी छोटी से छोटी समस्याओं को गंभीरता से सुना और ये सीधा संदेश दिया कि वे राजनीति करने नहीं बल्कि उनके दुख दर्द कम करने आए हैं। बड़ा बंगाल के प्रवास से मुख्यमंत्री कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क सुविधा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी दे गए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को बड़ा बंगाल के लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने और इसके लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में पैदा होने वाले राजमा की ब्रांडिंग कर उसे विशेष पहचान दिलवाई जाएगी। इस क्षेत्र के भेड़ पालकों से प्रदेश सरकार मीट के उचित मूल्य पर खरीद करेगी। इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा भी की।

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगाल के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लाने, छात्रावास निर्माण पर विचार करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करने का आश्वासन भी दिया है। वे सुदूर गांव जो कभी विकास की राहों से अछूते थे, अब इन्हीं राहों से गुजरते हुए विकास इन क्षेत्रों में पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार संवेदनशील प्रशासन की मिसाल कायम करते हुए पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इस कड़ी में 2 अक्टूबर से अपना परिवार सुखी परिवार और इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को शुरू किया जाएगा। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान 8 चरणों में सर्वेक्षण करवाया था। प्रदेश में लगभग 19 लाख परिवारों में से 1,80,000 परिवारों की पहचान ऐसे परिवारों के रूप में की गई है जिन्हें सरकार से अधिक सहायता और ध्यान की आवश्यकता है। इन परिवारों का चयन उपायुक्तों के माध्यम से किया गया है। इन परिवारों के लिए राज्य सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी। इसके तहत अगले 2 वर्षों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त अगले 2 माह के भीतर योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। इससे प्रत्येक परिवार की विशेष आवश्यकता की पहचान करने में मदद मिलेगी और केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को इन परिवारों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि वे उपलब्ध अवसरों और कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। इसके साथ साथ माताओं और बच्चों को बेहतर एवं अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू की जाएगी। पायलट चरण में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 21 ICDS ब्लॉकों में योजना को शुरू किया जाएगा। 6 महीने बाद पायलट चरण की समीक्षा की जाएगी और इसके परिणामों के आधार पर योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। योजना के तहत माताओं और महिलाओं तथा 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वर्तमान में दिए जा रहे पोषण सहयोग को और अधिक बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों की पसंद के अनुसार सप्ताह में 3 बार दूध या अंडे उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी जिला एवं ICDS ब्लॉक स्तर पर रहेगी। इससे स्थानीय स्तर पर माताओं और बच्चों के लिए स्वच्छ तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की योजनाएं संवेदनशील वर्गों को केवल आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर रही, बल्कि ये इन परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन प्रदान करना भी सुनिश्चित कर रही है। साथियों, हिमबीट्स के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आपने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबीट सुना। ये कार्यक्रम आप हमारे हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना के वह शान की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

0: इंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 MHz पर रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
3: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
4: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से

0: ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ

0: मुलाकात संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मिस्टर मोदी अर्ज द स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स टू रिमेन कंसिस्टेंट इन द एफर्ट्स एंड बिल्ड अ रोबस्ट स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।
2: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: ड्यूरिंग द इंटरेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस पवन कुमार चंदाना थैंक्ड मिस्टर मोदी फॉर ओपनिंग अप द स्पेस सेक्टर। He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: On National Space Day, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said the historic soft landing of Chandrayaan 3 placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज हम इस कड़ी में आपको सुनवाएंगे निर्माता निदेशक असित सेन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे निर्माता निदेशक असित सेन की। अपने समय के एक प्रख्यात फिल्म निर्माता के रूप में याद किए जाने वाले असित सेन ने 4 दशकों से अधिक के करियर में विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाई। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान उस युग के अन्य दिग्गजों के साथ विशेष उल्लेख के योग्य है। उन्हें अभिनेता असित सेन से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 24 सितंबर सन 1922 को ढाका के विक्रमपुर के अतिशाही गांव में जन्मे सेन बचपन से ही कला के प्रति गहरी रुचि रखते थे। नागांव असम में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए और युवावस्था में ही फोटोग्राफी की ओर आकर्षित हो गए। अपने चाचा रामानंद सेन गुप्ता, जो एक स्थापित छायाकार थे, की मदद से असित सेन ने हिंदी फिल्मों की शूटिंग में भाग लेना शुरू किया और फिर डीके मेहता के सहायक के रूप में भारत लक्ष्मी प्रोडक्शंस में शामिल हो गए। जल्दी वे पूर्व राग में अपने चाचा के सहायक बन गए और बाद में एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता के रूप में उभरे। अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए सेन ने सबसे पहले महात्मा गांधी के नौ आखली और पटना दौरों पर आधारित एक वृत्त चित्र बनाया। इससे मिले आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 1948 में असमिया भाषा की फिल्म बिप्लवी से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। कुछ वर्षों बाद यानी 1956 में उन्होंने अपनी पहली बंगाली फिल्म चाल चल बनाई, जिसमें अरुंधति देवी ने अभिनय किया था। ये फिल्म सफल रही और कई वर्षों बाद उन्होंने इसी फिल्म को हिंदी में सफर के रूप में रीमेक किया, जो हिट रही।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक अजित सेन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, 1966 में बनी उनकी बंगाली फिल्म उत्तर फागुनी की रीमेक ममता एक वर्ग संघर्ष की कहानी में उन्होंने एक कहानीकार के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री सुचित्रा सेन ने दोहरी भूमिका निभाई थी और इसमें लता मंगेशकर द्वारा गाया गया यादगार गीत रहे ना रहे हम और हेमंत कुमार के साथ उनका मधुर लगभग आध्यात्मिक युगल गीत छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा शामिल थे।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं निर्माता निदेशक असित सेन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। फिल्म सफर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निर्देशक आशय सेन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल। कार्यक्रम गीतों की महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल, पंकज जोदास व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत फिल्म बहार आने तक।

गीतों की महफिल कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी बहार आने तक फिल्म से। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास व साथियों की। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। गीतों की महफिल कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से यह गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

104 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत अनुराधा पौडवाल उदित नारायण के युगल स्वरों में फिल्म जीना तेरी गली में।

अभी आपने सुना जीना तेरी गली में, इस फिल्म से यह गीत। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। गीतों की महफिल कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में सड़क फिल्म से ये गीत।

अभी आपने सुना सड़क फिल्म से यह गीत। आवाजें थी कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की, गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। गीतों की महफिल कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति रंग फिल्म से।

इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों की महफिल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है अब रविवार सरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले की जाएगी।

0: आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद मालशे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी। Welcome to the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Tonight, we present the vocal recital by renowned Hindustani classical vocalist Vidushi Pratima Tilak. Born in non-musical background, Vidushi Pratima Tilak showed a natural flair for music since early childhood. With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas, and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her into the intricacies of the Jaipur Atrauli Gharana Gayaki over a period of two decades. She has also received guidance from Pandit Arun Dravid and Professor Milind Malshe, both scholars of Jaipur Gayaki. Based on the solid talim that she received from both her gurus, her Gayaki is embellished with open-throated akar, bol, upaj, going hand in hand with the lay and beautiful gamak patterns of taan, all within the framework of the raga. One of the leading vocalists to present and propagate the Gayaki of the legendary Gaan Tapaswini, Srimati

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत जोशी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was राग सुहा and that concludes vocal recital विदुषी प्रतिमा तिलक in tonight रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। She was accompanied on tabla by श्री यति भागवत and on harmonium by श्री अनंत जोशी and सारंगी उस्ताद फारूक लतीफ खान। This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा

0: गंतव्य के रूप में देखे। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू